0: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
1: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
3: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim.
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: today.
1: रिश्ता नेटवर्किंग। आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
3: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
4: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 8 o'clock.

0: अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से रब्ता कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम, आपका अपना रेडियो स्टेशन।
1: Inspired. Inspire FM.
2: I have wisdom.

0: ناک دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں، تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
1: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 AM.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
3: بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کرنا، سوال نہیں پوچھنا، اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں، ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں، اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے، تو بات کیجیے، کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
4: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم. A very very warm welcome to the show. سن رہے ہیں جی آپ بول کے لب آزاد ہیں تیرے.
5: اپنے آپ سے سوچنا نا، اسپیشلی شو میں آنے کے بارے میں، آپ مت اپنے آپ سے، میں لوگوں سے کہتا ہوں مہربانی کرو میرے بارے میں اور جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کے بارے میں، اپنے آپ سے سوچنا بند کر دیں، بجائے اس کے اس پہ دھیان دیں جو میں کہہ رہا ہوں.
6: ٹھیک ہے سر جی، ٹھیک ہے. ہاں جی، اور لاسٹلی آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک یو. لاسٹ ٹائم میں نے میم آئی تھی، مجھے ان کا نام نہیں معلوم، لائک آئی ریلی وانٹ ٹو تھینک ہر فار،
5: ہاں وہ ڈاکٹر صاحب نے آ کے آپ کے بارے میں کہا تھا.
6: ہاں جی، اس دن میں کافی ایموشنل تھا. پہلے تو میں اپنے آپ کو سنبھالا، اور جیسے انہوں نے بولا میرے پھر آنسو نکل پڑے. میں کہا یار بڑی مشکل سے،
5: یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ کنٹینر کی ساری بات. لیکن دیکھیں، آپ نے اپنے طریقے سے ایکسپریشن دیا، انہوں نے بھی آ کے دیا. آپ نے ان چیزوں کو سے قطع نظر ہو کے باہر نکل کے آپ نے ان تمام چیزوں، ہمیں پیور لوگ چاہیے، پیور لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، پیور ایموشن بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس کو صرف ہم نے اس انرجی کو ہارنیس کرنا ہے، اور اس کی میں آپ سے بھی بہت زیادہ جذباتی آدمی تھا، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے کہ ایموشنز کو انٹیلیجنٹلی یوز کرنا ہے، ورنہ یہی ایموشن آپ کو کھا جائیں گے. اور اگر آپ اس کو کیئرفلی اور سمجھ کے ایموشنز کو یوز کریں گے، تو یہ آپ کو وہاں پہنچا دیں گے جو رب ہم سے چاہتا ہے. تو ہینڈل کرنے کی سچویشن ہے سر، اس میں کوئی ویکنیس نہیں ہے، کوئی بھی ویکنیس نہیں ہوتی. ورنہ میں کتنی دفعہ طلعت صاحب کے بارے میں شو کر رہا تھا، میری آواز کتنی دفعہ رند گئی، کتنی دفعہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کتنی دفعہ میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے جب میں اتنی پیار اور عزت کرتے ہیں تو میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا میری آواز گلوگیر سی ہو جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے آپ لوگوں کو. نظم پڑھتے ہوئے بھی کبھی ہو جاتی ہے. اس میں کوئی میں کمزوری میں یہ کہ اندر نہیں ہے، یہ تمام چیزیں یہ ایکسپریشن ہے انسان ہونے کے ناطے ہمارے. ٹھیک ہے، نائس آف یو برادر، تھینک یو ویری مچ. مہربان ہمارے ساتھ کافی دیر سے. ریڈیو آزاد یو آن دی ایئر.
7: جی السلام علیکم.
5: جی جی وعلیکم السلام. سوری لمبا ہو گیا لیکن امپورٹنٹ تھا.
7: میں بھائی ہیرا سنگھ کو دو پوائنٹس دینا چاہوں گی باتوں باتوں سے. ایک تو یہ، آپ جب ہمیں ہم سے ڈسکس کرتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ پرسپیکٹو، ڈفرینٹ اینگل، ڈفرینٹ پوائنٹس اور اپنے ایکسپیرینسز سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، جس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین وی فگر آؤٹ کہ ہاؤ آئی کین اپلائی سرٹن تھنگس اینڈ ہاؤ کین آئی اوائڈ فیو تھنگس. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ شخص جس نے وہ جملہ کہہ دیا بھائی سے، تو دیٹ مینس کہ وہ کس فیز میں تھا، کس فیملی سے آیا ہے، اس کا بچپن کیسے گزرا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور وہ کس مسائل مشکل سے گزر رہا ہے. سو وہ بھی ہمیں سوچنا ہوتا ہے. جب ہم ایک دفعہ یہ سوچ لیتے ہیں تو ہمارا یہ سارا جو ایک تھاٹ ہے وہ ہم اس کو روک کے پھر ڈفرینٹ اینگل پہ چل پڑتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم پیٹرنز دیکھتے ہیں اپنے بھی اور دوسروں کے. میں نے لائف میں جب اپنے پیٹرنز اور دوسروں کے دیکھنے شروع کیے تو مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی کہ وائی سرٹن پیپل کیپ ریپیٹنگ دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین، سیم پیٹرن، سیم تھنگ فرام چائلڈ ہڈ اپ ٹل ناؤ. تو میں اپنے پیٹرنز، دین آئی وانٹ ٹو بریک دا بیڈ پیٹرنز اینڈ ٹرائی ٹو کیپ دا گڈ پیٹرنز، تاکہ میں ان پیٹرنز پہ میرا ذہن اس پاتھ پہ چلتا رہے جو مجھے فائدہ دے رہے. تو وہ چیزیں ہمیں ہم خود سیکھتے ہیں اور لائف کے محل میں اس موڑ تک روزانہ ہی سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ. دوسرا یہ کہ جس وقت ہمیں، میں یہ کوشش میں نے کی ہے کہ غصہ جب آئے تو میں اس لمحے کے لیے دور ہٹ جاؤں، چپ کر جاؤں، یا میں تھوڑی دیر کے لیے کام ڈاؤن ہو کے پھر میں جو ڈفرینٹ اینگل سوچتی ہوں وہ مجھے بہت کچھ سمجھاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تو سب کہتے ہیں نا پانی پی کے اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، تو اینگل بالکل ہی ڈفرینٹ. फिर समझ में आने लगता है. तो हम सब करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. यस, आपने इनको पॉइंट बहुत अच्छा दिया कि अपने आप को बीट अप करने से आपने उस शख्स को खत्म कर दिया है जो कुछ कर गुजरता. सो वी ऑल कैन डू बेटर इन आवर लाइफ बाय आई थिंक फॉलोइंग दीस.
5: हमें अपने आप से ना, अपनी ही जो हमने जंजीरें खुद बांधी हुई है ना अपने पैरों में और अपनी सोच में, उससे अपने आप को आज़ाद करना पड़ेगा. छोटी छोटी बातों पे अपने आप को मारना, गलतियां हो जाती हैं, ब्लंडर्स भी हो जाते हैं, बट उसके बाद हमें सीख आगे निकलना.
7: छोटी भी और बड़ी भी.
5: और छोटी बातों पे स्पेशली बड़ी रिएक्शंस नहीं देने चाहिए. जो काम मैं कहता हूँ ना सुई से हो सकता है, उसमें गोली नहीं मारनी चाहिए.
7: हुक्म. आज का सवाल के माशरे में, जैसे मैं एक जहन में पाकिस्तानी माशरे को रखती हूँ, वहाँ पे पढ़ना लिखना लिटरेसी, वहाँ पे कुछ सोच की जो एक खराबी है या एक जिंदगी का तरीका है. अब वहाँ पे जितने भी लोअर तबका है, लोअर तबके से मुराद के उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो उनके बच्चे भी ज्यादा हैं. अब जब वो बच्चे बड़े होंगे वो और मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होंगे. माशरे में उस तरह की मेजॉरिटी आ जाएगी और जब हम जैसे लोग, यानी कि जो थोड़े से समझ रखते हैं थोड़ी सी, उनके मुकाबले पे, क्योंकि हमें शायद हालात अच्छे मिले हैं, जीन्स अच्छी मिली हैं, एनवायरनमेंट अच्छा तरह मिला है, तो जब हम बहुत सारे आटे में नमक की तरह हम हो जाएंगे और वो मेजॉरिटी हो जाएगी, तो वहाँ पे क्लैशेस बहुत होंगे. वहाँ समझ के क्लैशेस, वहाँ पे रिश्तों के क्लैशेस, वहाँ इमोशन के, तो वहाँ हारमोनी खत्म होगी. तो बहुत ज़रूरी है कि एक माशरे को, एक अच्छे एनवायरनमेंट को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग उस लेवल पे सोचना शुरू करेंगे. जैसे उस दिन हमने कलेक्टिव थिंकिंग पे भी बात की थी, तो वहाँ पे कितना मुझे, आज दुनिया में एजुकेशन तो बहुत है लेकिन जहालत भी बहुत है एजुकेशन के साथ. तो जब तक मेंटल एजुकेशन हम और मेंटल डीपर थिंकिंग और ब्रॉडर विजन हम अपने बच्चों में नहीं पैदा करेंगे, अपनी नस्लों में, अपने तराफ में, तो फिर हम उस जहालत से ही लड़ते रहेंगे, उसमें ही सारी एनर्जी जाया हो जाएंगी जो आज हमें पाकिस्तान में दिखाई दे रही है, लीडर्स में भी और दूसरी चीजों में भी, कि जो उस जहालत के पैटर्न से हटना ही नहीं चाह रहे और दूसरा पाथ ही नहीं लेना चाह रहे.
5: बिल्कुल ट्रू, ऐसा ही है. बिल्कुल, मैं इसके बारे में बात करता हूँ. कोई और भी हमारे साथ, रेडियो आजाद ही रौंदी है.
8: अस्सलामुअलैकुम आजाद लाला.
5: वालेकुम सलाम. कहाँ रह गए थे, लोगों ने हमारी मत मार दी है पूछ पूछ के, सजीला जी का क्या हाल है, उनकी सेहत ठीक है, वो कहाँ गायब हो गई है. मैं तो आपकी, मैं तो ये शो इसलिए करता हूँ कि सजीला जी के जवाब देता फिर उन लोगों को.
8: आप, मैं कहीं नहीं थी, यही थी आजाद, बस काम के लिए थोड़ा मुझे ट्रैवल करना था.
5: अच्छा, मेरे तो एक लेडी ने मुझे कहा मेरा तो वो लेडी क्रश है. मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा डॉक्टर साहब.
8: वही सलामत थी आजाद. और आप कैसे, आपकी तबीयत कैसी है?
5: ठीक है, सब अल्लाह करो, काम चलाए. और पार्टियां इतनी की ना हमने थैंक्सगिविंग में, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम थोड़ा थोड़ा सबको टाइम देते हैं, तो उसमें के रेस्टोरेंट में हीटर, उधर से हीटर लगा हुआ था, उधर से ठंडी हवाएं आ रही थी, दोनों जब मिक्स हुई तो उन साहब को तो कुछ नहीं हुआ, मेहरबानों को, मुझे. मैं लेट गया जाके अगले दिन घर में फिर.
8: तो अब कैसी, अब बेहतर हो?
5: आज हमने नहीं वादा, हमने मंडे वेंसडे का वादा किया हुआ है, तो चाहे जो मर्जी हो जाता हमने पहुंचना था.
8: जबरदस्त आजाद वाला, माशाल्लाह.
5: हीरा सिंह जी ने आके तो चार चांद लगा दिए शो को.
8: आजाद वाला वो अभी मैंने पता है अभी सुनना शुरू किया, उनका सिर्फ एंड का थोड़ा सा मैंने सुना. इंशाल्लाह ताला ये शो मैं दोबारा कल सुनूंगी.
5: बहुत काम की बातें उन्होंने की हैं और बहुत ही काम की चीजें जो हम सीख सकते हैं, हम तमाम लोग वही अपनी जिंदगी में रोज हमारे साथ हो रहा है बट बता नहीं पाते, और जब बता नहीं पाते तो फिर हम एंगल नहीं दे पाते उन चीजों के बारे में.
8: नहीं, आजाद हीरा सिंह जी तो माशाल्लाह से इतने स्वीट हैं, वो तो जब भी आते हैं उनकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है.
5: हाँ, बस इसीलिए वो कम आते हैं कि उनके, उनको लगता है कि उसकी वजह से इतना कुछ हो जाता है, मैं एक दफा सिखा के फिर उसके बाद महीना गायब हो जाते हैं. उनको नहीं पता कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन रोज का कम है, ये हफ्ते में कम अज कम एक दो दफा लाजमी आना है. जी
8: बिल्कुल. आपसे एक क्वेश्चन है, मैं आई डोंट नो, सब लोग मुझे समझ नहीं आ रही. मेरी एक फ्रेंड है और शी इज वेरी स्वीट, बहुत अच्छी है, उसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन रिसेंटली उसको मैंने जैसे नोटिस करी, उसमें एक अजीब सी आदत आ गई है. वो कोई ऐसी बात करेगी कि लाइक शी शुडंट बी आस्किंग दोज थिंग्स दूसरे इंसान से, लेकिन वो सिर्फ इसलिए पूछती है कि वो हमारे एक्सप्रेशन देखे कि हमारे कैसे चेहरे बदल रहे हैं या आवाज बदलती है, एकदम लाइक यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, ऐसे वो सवाल ऐसे करती है कि सिर्फ हमारे एक्सप्रेशन देखने के लिए, तो हाउ डू यू हैंडल सच पीपल?
5: असल में ना दो किस्म के लोग होते हैं, ये जो जिस टाइप के लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, फ्रेंड अच्छी हैं या स्वीट हैं या फ्लां हैं, स्वीट होना एक और चीज़ है, बहुत सारे वीक लोग बड़े स्वीट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती कि वो जैसे हैं वैसे निकल आए सामने, वो खाम खा स्वीट भी होते हैं लोग, लेकिन ये जो क्रिएटिंग अ स्टर टाइप लोग होते हैं ना, कि आपके रिएक्शन सिर्फ उन्होंने नोट करने हैं, इनके दिमाग में कुछ चल, इनकी कोई दिमाग में गेम चल रही होती है, ठीक, या ये कहीं से सीख के आए होते हैं या इनके साथ कुछ हुआ होता है, इनको जो कुछ सामने होता है उस पर यकीन नहीं होता, तो ये मज़ीद लोगों को जज करने के लिए या चेकआउट करने के लिए इस किस्म का शोशा छोड़ देते हैं कि आपके आगे से रिएक्शंस क्या हैं। और दूसरी बात ये है, सम पीपल दे पहले वो जो होते हैं वो नहीं होते, ठीक है, कुछ शुरू में जो जैसे होते हैं कुछ अरसा तक होते हैं वो नहीं होते, असल उनकी पर्सनैलिटी आहिस्ता आहिस्ता आप पे खुलती है। बहुत सारे लोगों की डिवोर्सेज होती हैं, आप समझते हैं यार ये इतना अच्छा आदमी है, ये इतनी अच्छी लेडी है, ये क्यों हुआ, लेकिन जब आप उनको जानते हैं कुछ अरसे के बाद आपको समझ आती है कि वो ऐसे दो तीन पॉइंट्स के ऊपर उनकी ज़ात का हिस्सा हैं जो वो बार बार वहाँ पर पिंच करते हैं, जिसकी वजह से कोई रिश्ता भी नहीं चल सकता, ठीक है, लेकिन इसके लिए ये और क्योंकि हमको तो मतलब अच्छे बुरे की एक बहुत ब्रॉड किस्म का ब्रश है जिससे हम लोगों को पेंट कर देते हैं, और इतना हमें अकल समझ होती नहीं, ना हमने कभी थेरेपी में गए हैं, ना हम कोई चीज़ों को मानते हैं कि मैंने गलत किया या नहीं गलत किया, तो उनको बताया भी जाता है तो वो फिर आपकी जान के दुश्मन हो जाते हैं, तो हमारी जान के तो बहुत सारे दुश्मन हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को नहीं भी चीज़ों को बताना चाहिए, बट ये जो लोग होते हैं इस किस्म की बातें करके, शुरू में जो ये होते हैं वो नहीं होते, बाद में जब ये ऐसी बातें करना, स्पेशली जो बातें लोगों की नहीं बनती पूछने की किसी से भी, वो उनको नहीं पूछनी चाहिए, वो चाहे वैसे भी जहालत में भी नहीं पूछनी चाहिए। पिछले दिनों कोई भी लोग बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं और पूछते हैं जिससे उसका कोई सरोकार नहीं, वो सिर्फ आपको कंपार्टमेंटलाइज करने के लिए पूछते हैं कि वो किस कंपार्टमेंट में आपको डाले, और या उन्होंने आपके बारे में जो भी सोच रखा है उसको फिगर आउट करने के लिए, वो कंफर्टेबल होने के लिए ये चीज़ें करते हैं, और जो लोग जिनके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये परमानेंट प्रॉब्लम है, ये कभी नहीं जाएगी, आपके बताने से भी नहीं जाएगी, उनको समझाने से भी नहीं जाएगी। ये कीड़ा जिसको होता है ना दूसरे की ज़ात में या दूसरे की ज़िंदगी में घुसना और चीज़ों को फिगर आउट करना, और फिर कुछ सवाल वो ऐसे करते हैं कि जिनके जवाब जो उनको मिलते हैं उस जवाब से वो अपने जहन में एक खाका बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं, और उस इमेज को वो पक्का कर लेते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो जाएं, उनका डर ख़त्म हो जाता है दूसरे बंदे से। सो ये इसलिए बहुत सारे लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों से कोशिश करके दूर रहा करें।
8: तो लेकिन जब वो इस तरह के करते हैं, लाइक आप बर्दाश्त करते हैं, बात भी टाल लेते हैं, वहां से उठ भी जाते हैं, इग्नोर भी करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है व्हेन यू रिएक्ट, और जब आप रिएक्ट करते हैं तो उसी को वो पकड़ लेते हैं फिर।
5: हाँ जी, वो रिएक्ट इसलिए करते हैं ना कि आप यू स्टिल इंटरेक्टिंग विद देम। मेरा नॉर्मली जैसे मैं अभी शुरू में हमारे घर में या बाहर में या दोस्तों में जब भी कोई ऐसी बात मुझसे पूछता है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, आपका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं, कोई मसला नहीं, आप मैंने कहा मैंने कभी आपसे ये बात पूछी है, आपको भी नहीं पूछनी चाहिए, और उस वक्त जो, और अगर कोई उसके बारे में कोई पॉइंट देने की कोशिश करेगा तो जो आवाज़ मेरी बनती है उससे मैं खुद ही डर जाता हूँ। क्योंकि हर इंसान को ये समझ होनी चाहिए कि अगला इंसान जो है जो कर रहा है, मैं अपनी नेचर पर बहुत काम करके कुछ लोगों को बर्दाश्त करता हूँ, मैं अपनी नेचर पर बहुत काम करके सब्र करके बर्दाश्त करके और रब की खातिर और इस बात की खातिर कि ये भी इंसान है, हम सब इंसान हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम सब स्ट्रगल में हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी वही रोने धोने वही परेशानियाँ वही मसले होते हैं, तो आई हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम एज अ ह्यूमन बीइंग, विच इज़ वेरी ट्रू। कोई इसमें मुझे कोई मुबालगा या शर्म, वो बार बार वही नीच बातें वही घटिया बातें बार बार का रोना, विक्टिम सिंड्रोम, मेरे साथ ये हुआ, अल्लाह ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ फैमिली ने ये किया, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, मुझे ऐसे लोगों, मुझे पता होता है ये सिर्फ लोग धरती पे बोझ हैं और अब ये अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करेंगे, मुझे इससे तकलीफ़ नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करेंगे, वो अपनी औलाद की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की और एक इन्वायरमेंट को परमानेंट गंदी मच्छी हैं वो ख़राब करेंगे, तो फिर उनके साथ मेरा बिहेवियर बेइंतहा सख्त हो जाता है। किसी की 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की भी सज़ा है, और किसी ने मुझसे कहा जी इस तरह के अगर कोई ये छोटी सी बात इस पे इंसान अगर फौत हो जाता है तो गिले शिकवे रह जाते हैं, मैंने कहा नहीं, मैंने उनको माफ़ किया, कोई गिले शिकवे नहीं है, वो आराम से मर सकते हैं, और मुझे भी आराम से अगर कोई नहीं आई तो मुझे कोई लास्ट मोमेंट पे ये नहीं होगा कि मैंने कुछ कहा या नहीं कहा, कोई दिल में तो कुछ किसी के लिए बुरा है ही नहीं, आपने कुछ हरकतें की उसके हिसाब से मैंने आपका हिसाब कर दिया, ختم ہوگی بات. آپ جب وہ نہیں کریں گے تو آپ کا جو اس حساب سے آپ کا حساب کر دیں گے. اس میں ناراضگی کیا ہے, اس میں پرسنل کیا لینا ہے کسی چیز کو. اور اگر مر گئے تو کوئی بات نہیں, اللہ بھلا کرے ان کا بھی, ہم مر گئے تو اللہ بھلا کرے ہمارا بھی, ہم نے کوئی پرسنل لڑائی تھوڑی بنا رکھی تھی کسی کے ساتھ.
8: تو آزادہ جو آپ سزاؤں کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کبھی کبھی لمبی میں سزائیں, آزادہ یہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ, بہن بھائی سب کے ساتھ کرتے
5: ہیں؟ ہاں جی, میں باپ کے ساتھ بھی, خان جی کے ساتھ بھی کی. میں ان کو پتا ہونا چاہیے میں کون آدمی ہوں. میں بچپن سے وہ مجھے جانتے تھے, 30-35 سال کی میری زندگی ان کے ساتھ گزری. انہوں نے کسی بندے کے کہنے کے اوپر, ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کیسے کہہ دیا. ایک بات انہوں نے کی تھی, اس کے بعد انہوں نے 6 مہینے سال 3 سال تک معافیاں مانگی سیدھی سیدھی. میں نے کہا نہیں میں, اور جب تک وہ معافی مانگتے تھے آگے سے ساتھ غصہ شروع کر دیتے تھے. میں نے کہا نہیں, بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, ریکٹیفائی کریں اس بیہیویئر کو. میں کہا آپ مجھے معافی مانگ رہے ہیں کسی غلطی کی, آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ ڈاڈے ہو رہے ہیں. میں ڈرامہ بند کریں, نہیں کھیلنا میں نے یہ کھیل. آپ کو کلیئر کٹ بولے, یہ ایسے سچ تھا میرے پاس, گواہ ہیں آپ کے پاس, سب نے آپ کو بتایا. آپ پھر خام خواہ اس قسم کی بات کریں, اور مجھے اپنے مطلب تکلیف ہوئی اس بات سے کہ آپ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح, پھر آپ نے کیوں کہا. اور وہ بہت ہی کچھ پیسوں سے ریلیٹڈ یا کسی ایک چیز کے بارے میں بات تھی. تو میں نے کہا میں آپ کو میں جس جگہ پہ رکھتا ہوں یا جتنی میں آپ کی عزت اور مقام میں آپ کو دیتا ہوں, آپ اس قسم کی بات کرتے ہوئے بہت چھوٹے لگے ہیں, مت کریں اس قسم کی آئندہ بات. کوئی بندہ تو ہو نا جو 80 سال کی عمر کا ایک بندہ, جو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ میں دیکھ رہا تھا آہستہ آہستہ وہ غلط, جو وہ صحیح سمجھتے تھے وہ غلط تھے, لیکن وہ صحیح سمجھ کے اس پہ پکے ہوئے جا رہے تھے. تو دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. اور میں نے ان کے ساتھ اس لیے نہیں اسٹینڈ لیا تھا کہ وہ میرے فادر ہیں یا میرے سے, بات فادر اور بیٹے کی ہو ہی نہیں رہی ہے, بات غلط اور صحیح کی ہو رہی ہے. فادر کے حساب سے تو وہ جو مرضی کریں, انہوں نے ہمیں پیدا کیا, انہوں نے بڑا کیا, جو کچھ بھی وہ کہیں سر آنکھوں پر. لیکن ایک بات غلط اور صحیح کو آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں اور اوپر سے زور لگا رہے ہیں اور اوپر سے ڈڈا پن کر رہے ہیں آپ کے, میں صحیح ہوں, نہیں ہے آپ سے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ بھی پھر کنفرم بھی ہو گیا, اور اس کے بعد آپ اس چیز کے لیے سوری بھی کر رہے ہیں. تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے. اور دوسری بات, میں کوئی پرسنل تھوڑی ہوں اس سے, میں نے آپ کا باپ بیٹے کا رشتہ یا محبت یا عزت یا مقام تو آپ کا ختم نہیں ہوا. یہ ایک علیحدہ فائٹ ہے, اس فائٹ میں ایک بات ہو رہی ہے کہ غلط اور صحیح کیا ہے. اتنی سی بات ہے اس میں. باپ بیٹے کا ہم لوگوں کو نا اصل میں, کیونکہ سمجھ نہیں ہے زندگی میں چیزوں کی, ہمیں سٹینڈ لینا نہیں آتا, ہم جذباتی ہو کے پرسنل کہانیاں اور ڈرامے شروع کر دیتے ہیں بیچ میں کہ آپ مجھے تم سے معافی مانگنی پڑے گی. تمہیں بھائی کس نے کہا ہے تم کون, مطلب اس کا مطلب ہے غلط اور صحیح میں اگر میں صحیح پہ کھڑا ہوں تو مطلب آپ میرے ساتھ جسٹ بیکاز میں چھوٹا ہوں یا جسٹ بیکاز آپ نے پیدا کیا تو آپ صحیح ہو گئے. نہیں بھائی, اسی طرح تو سسٹم برباد ہوتے ہیں, اسی طرح تو غلط اور صحیح کا نظام ہم نے برباد کیا ہے. تو ان کو جب میں بڑا ہو رہا تھا تو کس نے ان کو قرآن کا ترجمہ دیا, کس نے ان کو وہ کتابیں دیں کہ آپ یہ کتابیں پڑھیں, کس نے ان کے ساتھ گھنٹوں ڈبیٹس کی کہ غلط اور صحیح اور رب کون ہے اور کیا کانسیپٹ ہے. میں نے ہی تو ان کا سارا کانسیپٹ سیدھا کرایا, میں نے ہی موت ان سے موت کا ڈر ان کے دل سے نکالا, ان سے میں نے موت کے بارے میں ڈسکشنز کی, قبرستان تک نہیں جاتے تھے اور بہت ساری چیزیں کرتے تھے. تو میرے ساتھ تو کم از کم, اور کسی اور نے کچھ کہا اور اس کی بات مان کے انہوں نے یہ کر دیا, وہ فادر نہ ہوتے تو بڑی لمبی اس کی سزائیں تھیں, لائف ٹائم بھی ہو سکتا تھا. تو مطلب آپ ایک جانتے چیزوں کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے. تو اور بہن بھائی ہوں, ماں باپ ہوں, بچے ہوں, کوئی بھی ہوں, کانسٹیٹیوشن ہے ایک, ٹھیک ہے. دیکھیں ملک ہمارا کیوں برباد ہوا, ایک کانسٹیٹیوشن تھا, اس کانسٹیٹیوشن کو کوئی بندہ نہیں مان رہا, ہر بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے. تو دیکھیں دا کنٹری از گون ٹو دا ڈاگز, ڈیڈ اٹ ناٹ, بتایا.
8: بالکل
5: اسی طرح گھر بھی ایسے ہی برباد ہوتے ہیں, بندے بھی ایسے ہی برباد ہوتے ہیں. بھائی ایک بندہ, یا تو آپ اس کتاب کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, یا تو یہ گھر ہے, اس گھر میں کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ہے. اس کے حساب سے میں اگر خود بھی اکاؤنٹیبل ہوں, آپ کو بھی اکاؤنٹیبل رکھتا ہوں. ساری سزائیں جو میں غلط کروں تو میں اپنے آپ کو دیتا ہوں, آپ کو میں کیسے چھوڑ دوں گا. تو جب آپ, اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کچھ کرانے, یہ سسٹم بنانے کی بات ہے. رب نے پوری دنیا کب سے بنائی, کب سے وہ چل رہی ہے, صرف ایک وجہ سے چل رہی ہے, اس کا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا. ہم بھی جب گھر میں ایک انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں, گھر بنانا چاہتے ہیں, ایک رشتہ بنانا چاہتے ہیں, اس میں لوگ اگر اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے ان تو وہ اگر اپنا کبھی کام نہیں کریں, جذباتی ڈرامے بازیاں کر کے ہر بندہ جس کام کے لیے آتا ہے اس کو چھوڑ کے باقی ساری فضولیات کرنے شروع ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان باتوں کی وجہ سے اگر آپ کسی کو سزائیں بھی دیتے ہیں تو مطلب پیار محبت نہیں ختم ہوا, رشتہ نہیں ختم ہوا, اس سے تعلقات نہیں ختم ہوئے, غلط ہے وہ کام. اور جب میں نے جو کسی بھی بندے کو سزائیں دی ہیں میرے اپنے, جن لوگوں نے مجھے پالا بڑا کیا میں نے ان کو بھی دی, لیکن جیسے ہی وہ سیدھے ہوئے, انوائرمنٹ انہوں نے کنڈیوسو کیا پیار محبت, اور اپنے بچوں کو غلط باتیں ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بتانے کے بجائے انہوں نے سچ جب بتانا شروع کیا تو واپس ہو گیا رشتے, نارمل ہو گئے سارے کے سارے. आकड़ से मैं काम नहीं करने दूंगा किसी को, ये बड़ा क्लियर है। बदमाशियां बदमाशियां मैं किसी के नहीं मानता। आपने इसी तरह ज़िंदगी ख़राब होती है, इसी तरह आप बर्बाद होते हैं। आप अगर हमसे मोहब्बत फरमाते हैं तो वो आपका मसला है, मैं इज़्ज़त मोहब्बत काम करना हम भी बीच में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, बल्कि मैं अपने हिस्से से ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ। मुझे आपके इसके बदले मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। एक सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें आप आराम से ज़िंदगी सुकून से जिएं। और मैं जिस घर में, जिस एनवायरनमेंट में और जिस जगह पे भी होता हूँ, वहाँ हर बंदे को, मैं किसी के साथ भी हिसाब लगाने बैठ जाऊँ ना कि मुझे कितना करना था और मैंने कितना किया और आपने कितना करना था, आपने कितना किया, हर बंदा फेल करा सकता हूँ मैं, हर बंदा। तो क्योंकि लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं और उनको बहुत कुछ चाहिए होता है। हमें ना बहुत चीज़ें करनी है ना बहुत कुछ चाहिए, मुझे जो कुछ भी करना है सही तरीके से करना है ताकि मेरे बाद भी वो चल सके और मैं वो करते हुए सुकून की रात को नींद कर सकूं, मैं खाना खाते हुए मैं सुकून से खाना खा सकूं, मैंने जितनी मेहनत की है मैं उसके बदले अगर मुझे कुछ आराम चाहिए तो मैं आराम कर सकूं। मैं ऐसे लोगों के साथ उठूं बैठूं चलूं फिरूं जिनके साथ मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कर रहा हूं जैसे कर रहा हूं उनको भी पता है, वो जो कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं वो मुझे पता है। ना मैं किसी पे शक करता हूं, ना शुबे करता हूं, ना मुझे किसी से कोई गिला है शिकवा है। कोई बात होती है गलत करते हैं, हाँ मैं बता देता हूं, कोई सही करते हो मैं उसको अप्रिशिएट कर देता हूं। मुझे इसी तरह की ज़िंदगी चाहिए, मैं क्योंकि डिज़र्व करता हूं ऐसी ज़िंदगी, क्योंकि मैं लोगों को ऐसी ज़िंदगी देता हूं। मैं उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं आता, मैं उनके पर्सनल रिश्तों में नहीं जाता, मैं उनके पर्सनल फाइनेंसेस में नहीं जाता, मैं कभी किसी के बैंक अकाउंट्स में नहीं जाता, मैं कभी किसी के ईमेल्स में नहीं जाता, मैं कभी किसी के फ़ोन्स में नहीं जाता। मेरे साथ जो आपका रिश्ता है मैं सिर्फ उस रिश्ते से रिलेटेड, जो भी सुकून और ख़ुशी अगर उसके अंदर नहीं है मुझे वो रिश्ता नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो भी गंध है उसका नाम रिश्ता नहीं है। लोग कहते हैं जी, लोग जब जहाँ रिश्ते होते हैं मोहब्बतें होती हैं वहाँ लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, बकवास करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं लोग, वो कमज़ोर लोग होते हैं जो ये बातें, वीक लोग बदतमीज़ी भी करते हैं, बदतहजीबी भी करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, वो भी नाराज़गियाँ भी होते हैं। जहाँ असल में प्यार मोहब्बत के रिश्ते 25-30 साल से मेरे चल रहे हैं, मेरी तो कभी लड़ाई नहीं हुई, ना उन्होंने कभी लड़ाई की। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन से सिला रहमी से वैसे ही गायब हो जाती है, तो वैसे ही लोग कहते रहते हैं। इसका मतलब है जहाँ लड़ाई झगड़े बदतमीज़ी बदतहजीबी हो रही है वहाँ रिश्ता है ही नहीं, आप सिर्फ लंबा उसको ड्रैग कर रहे हैं। झूठ बोलने से चीज़ें सच नहीं हो जाती, इतनी सी बात
8: है। लाला
5: क्लियर समझ आई बात?
8: बिल्कुल आ गई लाला।
5: अंदर से दूर से पठान तो नजर नहीं आया आपको?
8: जब आपने कहा ना जी मैं बदमाशियां नहीं मानता, उस वक्त मुझे
5: खत्म किसी की भी, किसी का मतलब है किसी की भी। और मैं ना बहुत सारे लोगों से, मैंने कभी ना कभी अदालतों में गया हूँ, ना मैं केसेस करता हूँ लोगों पे, ना मुझे लोगों से लड़ना है, ना मुझे लोगों को रास्ते में मैंने कभी गुस्सा किया, ना मैं एयरपोर्टों पे गुस्सा करता हूँ, मैं ना नाराज़ होता हूँ किसी से ना कुछ और। लेकिन और मैंने पर्सनली कभी किसी का, पैसों की वजह से मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि अदालत में चलेंगे, मैंने कभी रिश्तों में किसी को नहीं कहा कि अदालत में चलेंगे, मैंने अपने ख़ानदान में कभी कोई चीज़ और किसी को कभी नहीं कहा, वो चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादती करोगे और उसके बाद आप बदमाशी करोगे तो आप दुनिया में कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी लेवल पे हो, फिर मैं एक दफ़ा खड़ा हो गया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। ये मेरा सिंपल तरीक़ेकार है, चाहे उसमें कुछ भी जाता है मेरा, कुछ भी का मतलब है ये जो भी चीज़ें जाती हैं फिर वो जाने दूंगा मैं। इसलिए मैं ज़िंदगी में बहुत कम स्टैंड लेता हूँ, मैं ज़िंदगी में बहुत कम लड़ाई झगड़ों का हिस्सा बनता हूँ, मैं ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी मेरी ज़ाया करने के लिए है ही नहीं। बचपन में जवानी में जो गलतियां इंसानों से होती हैं वो हो गई, लेकिन उसके बाद किसी भी चीज़ में मैं जाकर पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादातर। ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी मसाइल लोगों के रहते हैं, नॉन प्रॉफिट्स में भी ऑर्गेनाइजेशन में मसाइल रहते हैं, कई लोग हमारे पास आते हैं, मुझे जैसे ही लगता है कि ये लोग इस तरह के हैं मैं उनके साथ काम नहीं करता, मैं शुरू से ही अवॉइड करना शुरू कर देता हूँ ताकि वो दिन कभी आए ही ना। क्योंकि स्मार्ट बात यह होती है कि जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पहले से ही जीते हुए हैं अगर आप उस बंदे से लड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन एक दफ़ा लड़ाई शुरू हो गई और आप ज़्याती के ऊपर ज़्याती कर रहे हैं और उसके बाद आप आगे से बदतमीज़ी बदतहजीबी और बदमाशी कर रहे हैं, तो फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं आखिरी दम तक खड़ा रहूँगा, चाहे मेरे साथ कोई आता है नहीं आता है, लोग छोड़ के जाते हैं, मरते हैं जीते हैं, जो कुछ भी हो जाए फिर मैं किसी सूरत पर नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे अपनी नेचर के बारे में कुछ चीज़ें पता हैं, ये मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा, नेचर मेरी ऐसी है। उसके लिए मैं एक दफ़ा खड़े हो गए तो जो भी नुकसान होता है फिर हो जाए, क्योंकि मुझे रब ने इतनी मेरे पे मेहरबानी की है, इतने मेरे पे कमाल लोगों के एहसानात हैं सारे के सारे, वो फिर कहीं ना कहीं मैं इस बात का इशू बना लेता हूँ कि आप गलत और सही की जंग में غلط کر رہے ہیں کام اور ایک حد سے زیادہ کر رہے ہیں, اور میں جب حق پہ کھڑا ہو گیا ہوں تو پھر چاہے بڑے, اسی لیے میں, مجھے لوگ کہتے ہیں نا جی دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہوا, فیملی میں یہ ہوا, یو نو ملک میں یہ ہو رہا ہے, فلاں آرگنائزیشن میں یہ ہو رہا ہے, آپ کچھ نہیں کہتے. میں لوگوں سے کہتا ہوں مجھے پتہ ہے جب میں کھڑا ہوں گا تو میرے ساتھ جتنے بھی آنے والے ہیں آپ سب بھاگ جائیں گے, ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں لوگ. میں جس بلڈنگ میں بیٹھا ہوں, جس ریڈیو اسٹیشن پہ تھا میں, جس ریڈیو اسٹیشن والوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, فلاں کریں گے, وہ کوئی 20-25 لوگ تھے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں آ گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ ریڈیو اسٹیشن بیٹھ کے, وہ جنہوں نے بیچنا خریدنا سب کچھ کرنا تھا, سب کے سب جا کے ان کے ساتھ مل گئے سوائے ایک بندے کے, اور وہ میں تھا جس نے اسٹینڈ لے لیا تھا.
3: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئمز سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمیں ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی لی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.
9: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
10: Have you ever asked yourself what you want to become? If you are unsure what to do after school, Barnfield College will help you. Whether you want to learn a trade or go to university, you will find a course that transforms your ambitions into a career. Visit our campus from GCSE Results Day to begin your journey. With our support network and employer connections, Barnfield will set you on the path to becoming you. Find out more at barnfield.ac.uk. Barnfield College. Get September ready.
11: Did you see that guy on TV?
12: What, that no comment guy?
11: Yeah, he was sick. What was his name?
12: I think it was Atiq Malik.
11: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
13: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
11: Liberty Law, there when you need us most.
14: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
15: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
16: سینٹرل بیڈفورڈشائر کالج اب سپتمبر 2026 سے شروع ہونے والے ایکریڈیٹڈ ہم لوٹن میں چائلڈ کیئر, ایسول, انگلش اور میتھس, امپلائبلٹی ہمیں اپلائی کرنے میں آپ کی مدد کرنے کا موقع دیں. آپ 26 اگست سے ہر بدھ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے کے درمیان ڈیلو کمیونٹی سینٹر LU1 1TD یا اپر جوج اسٹریٹ میں ڈرائیو ہب LU1 2QX پر ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں. پوری عمر کام آنے والی یہ کوالیفیکیشنز حاصل کر کے بہتر بنانے کے لیے ابھی اپلائی کریں.
17: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
18: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
3: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
4: हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन हेलो एंड वेलकम डालस फोर्ट वर्थ एंड द होल वर्ल्ड लिसनिंग टू रेडियो आजाद वॉइस ऑफ द पीपल तमाम सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो सुन रहे हैं जी आप बोल के लब आजाद है तेरे
5: हाँ जी जिंदगी में ना क्योंकि कोई चीज़ 100% कंफर्म नहीं होती है जैसे मसलहत आमेज जब कहते हैं ना झूठ शर अंगेज सच से बेहतर होता है यानी वो ट्रूथ जिससे आग लग जाए जिससे रिश्ते टूट जाएं जिससे कोई मसाइल पैदा हो जाएं उसकी जगह वो मसलहत आमेज यानी वो डिप्लोमेटिक किस्म का बोला हुआ लाय जो है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उससे कम अज़ कम रिश्ते नहीं टूटेंगे और बहुत बड़ा कोई डिबैकल का जो ना वो रीज़न नहीं बन जाता तो इंसान को खुदा ने अक्ल दी है फहम दी है और उसको डिसाइड करना उस सिचुएशन के मुताबिक ट्वीक करना ये उसको दिया है और इसीलिए कहा है कि किसी आदमी अगर तो वरना तो ट्रूथ है तो सच बोल दो लेकिन रब ने उसी रब ने आपको ये उसके हो सकता है मसला आपसे कोई बात पूछे किसी के बारे में कैरेक्टर से रिलेटेड कोई चीज़ आप सच बोल दें उनकी ज़िंदगी रिश्ते बच्चे बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाए सारे का सारा लेकिन वही रब आपसे कहता है कि दूसरों के ऐब छुपाओ तो कोई चीज़ें ऐसे वो ऐप जिससे कोई सिचुएशन डील हो सकती है या बेहतरी उसमें से निकाली जा सकती है या उसको चांस दिया जा सकता है फर्स्ट स्टेप में आपने वो करना है और अगर वो फिर बहुत सिचुएशन हद से बाहर निकल जाए और उससे मसाइल पैदा हो सकते हैं या उससे कोई बड़ी यू नो सिचुएशन पैदा हो सकती है तो फिर आपने उसको इन द इंटरेस्ट ऑफ द यू नो जिसको प्रो बोनो पब्लिक को कहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल उसमें अगर आप कोई चीज़ बताते हैं तो फिर वो और बात है लेकिन कई सारे सच बताने के नहीं होते तो अगर आप बताते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं क्योंकि जिनको आप बताते हैं उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है वो किसी को बंदा भी मार सकते हैं वो किसी हद तक भी जा सकते हैं तो आपने फिर ये समझना होगा कि आप किसको क्या कह रहे हैं इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपका ना अवेयर होना बहुत ज़रूरी है असल में हम जागे हुए नहीं हमें पता ही नहीं किससे क्या बात करनी है कितनी बात करनी है कौन सी बात किस सोच में करनी है हम बेहोशी में बेहोशी दिया शाटा मारते रहते हैं हम इधर उधर खाम खजे नहीं वो जो हमारे टुल्ले क्रिकेटर्स नहीं होते आके टुल्ले मारना शुरू कर देते हैं बैट्समैन और होता है टुल्ले मारने वाले और होते हैं फिर जब पोजीशन आती है वो सब कुछ मार के 50-60 बाहर निकल आते हैं तो हमने लाइफ में ना गाँव में पता कहते थे बेगमी दिया शाटा मार दे बेगम मतलब लगा हुआ उसको पता ही नहीं कि आउट भी हो सकते हैं उसको पता ही नहीं कि इन्हों क्या गेम चल रही है हमने हारना भी है जीतना भी है ये सोच समझ के खेलना है तो हम बेगमी दिया शाटा मार रहे हैं बेसिकली तो हम चाहते हैं कि बेगमी दिया शाटा में ही ना हम शादियां कर लें हमारे बच्चे हो जाएं हर चीज़ मतलब दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर मतलब वो सिर्फ हमारे लिए बाकी दुनिया जाए बाढ़ में ऐसे नहीं होता एंड दे लिव्ड मिजरेबली आफ्टरवर्ड्स बिकॉज दे डिड नॉट यूज देयर हेड इन टाइम और फिर को कहने जी सर ये ऑन टाइम होता है ये ऑन टाइम हो या इन टाइम हो यू डिड नॉट यूज योर ब्रेन दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट
7: सही लाना
5: और कुछ
8: एक और भी क्वेश्चन था लाला,
5: आज आज आज कोई नहीं है, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लोग फिक्र ही ना करें।
8: अच्छा लाला, एक
5: यू है, किसी ने कहा है यू हैड मी एट बेगमी दिया शाटा वो वाली। हाँ जी
8: लाला, मैंने देखा है जो जो लोग अंडर अचीवर्स होते हैं, जैसे स्कूल में या बचपन में अंडर अचीवर, वो बड़े होकर ज्यादा अच्छे रिस्क टेकर्स क्यों बन जाते हैं?
5: असल में ना जी, अंडर अचीवर का बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसानों को। एक तो ये अचीवमेंट के स्टैंडर्ड्स ही माठे हैं ना। मुझे तो कभी कोई आदमी अंडर अचीवर नहीं लगा मैंने ज़िंदगी में। ओवर अचीवर्स भी जो है ना, मुझे कभी उसमें भी कोई कमाल नज़र नहीं आया। ये मुझको डिसाइड करना है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। हो सकता है जो मेरे लिए अचीवमेंट हो, बहुत सारे लोगों के लिए वो अंडर अचीवमेंट हो। मैं जब से बड़ा हुआ, मुझे लोग 30 साल की उम्र से, मुझे 40 साल तक लोग कहते रहे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ भाई मुझे वो नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। सो ये अचीवमेंट्स, अंडर अचीवर या ओवर अचीवर या यू एम्बिशियस होना, ये बहुत डिबेटेबल है। बहुत सारे लोग मिजरेबल हैं कोई चीज़ अचीव करने के पीछे। उनकी सेहत चली गई, उनके रिश्ते चले गए, उनकी मैंने ज़िंदगियां बर्बाद हो गई, बट वो अभी भी उन्हीं चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं जो कि एक्चुअल में कोई माने नहीं रखती। तो डिपेंड करता है ये। और दूसरी बात है, जो अंडर अचीवर होते हैं वो बाद में, जारी बात है, उनको ये कॉम्प्लेक्स जोर लगाते हैं, फिर वो फिर ओवर कॉम्पनसेशन जैसे नहीं की जाती चीज़ों की, इस तरह के भी बहुत सारे लोग होते हैं। बल्कि मेरी अपना, मैंने जो देखा था, जो लोग बुक वॉर्म्स होते हैं या बुकिश होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, स्कूल के ज़माने में बहुत अच्छे थे, आगे ज़िंदगी में उनके बजाय जो मीडियोक्रस थे वो बहुत आगे गए, और जो बिल्कुल ही कोई उस ज़माने में जो पढ़ाई में बहुत ही बुरे थे, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कोई खास काम नहीं किया। उनकी वही अचीवमेंट थी जो स्कूल के ज़माने में थी ज़्यादातर लोगों की, ये भी मैंने देखा है। लेकिन जो मीडियम थे, दरमियान में जो लोग थे, उन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की। ये ऑब्जर्वेशन है, हर आदमी के लिए डिफरेंट भी हो सकती है। मैंने जो 2-4 हज़ार लोगों को देख के ऑब्जर्वेशन बनाई, क्योंकि टेस्ट तो इसी तरह ही होते हैं ना, स्टडीज़ भी इसी तरह ही होती हैं, सैम्पलिंग ही की जाती है लोगों में और उसके ऊपर ही स्टडीज़ करके देखी जाती हैं। तो मैं भी ज़िंदगी में जो देखता हूँ उसके हिसाब से ही, वो आप इतनी वो लोगों की तरह कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तो स्टडी नहीं की जा सकती। तो मैं तो यही शुरू से लेकर आखिर तक जो देखता हूँ, मेरे माइंड में वो चीज़ें रहती हैं, तो मैं हिसाब लगाता हूँ फिर सबकी लाइफ का, उनकी जहन का, क्या थे, क्या बने, क्या कर रहे हैं। फिर जब मिलता हूँ अभी मैं उनसे 10-20-30 साल के बाद, तो उससे भी मैं हिसाब लगाता हूँ कि ज़हनी तौर पे उन्होंने वैसे तो चीज़ें अचीव कर ली, लेकिन ज़हनी तौर पे बेचारे, अल्लाह माफ़ करे।
8: लाला, आपको नॉस्टैल्जिया होता है, आपको पुराना वक्त याद आता है अपना?
5: नहीं, मेरा नया वक्त, मेरा ये वाला वक्त इतना अच्छा है कि मुझे पीछे कोई वक्त याद नहीं आता। ना मुझे लोग वर्दियाँ याद आती हैं, ना मुझे कुछ और याद आता है। मुझे सिर्फ अपने वो यार, अपने वो दोस्त जो है ना मेरे, कभी कभी खान जी और माँ के साथ गुजरा हुआ कुछ वक्त जो है वो मुझे याद आता है कभी कभी कभी। लेकिन उसके बाद जो मेरी होश की ज़िंदगी में मेरे जो दोस्त इस दुनिया में नहीं है, और जिन लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो लोग, उन लोगों के साथ जो मेरा वक्त गुजरा है, मुझे सिर्फ वो याद आता है, दैट्स ऑल। और कभी भी ये नहीं आता कि वो वक्त दोबारा आए। मेरा ये है कि वो आगे लंबा, उस ज़माने में हम ऐसे थे, इतने खुश थे, तो अब आगे कितने कमाल हम कर रहे होते और खुश हो रहे थे। और फिर ये इस बात की तसल्ली भी रहती है कि आगे जाके मुलाकात भी करनी हो उन लोगों से, तो इतना कोई खास वो मुझे नहीं आता।
8: तो अगर बहुत से लोग कहते हैं वो बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, तो आपको क्या ख्याल है कि अगर उनको दोबारा उस टाइम में ले जाया जाए तो क्या वो खुश होंगे?
5: असल में ना, बहुत सारे लोग बहुत कुछ चाहते हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या करेंगे जब वापस जाएंगे। अगर ये चीज़ उनको वापस भी दे दी जाए, चीज़ें वक्त के साथ साथ रंग बदल जाती हैं, इंसान वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं, उनकी ख्वाहिशात बदल जाती हैं, हमारे इमोशंस भी इंसानों के लिए बदल जाते हैं। लेकिन हमें नॉस्टैल्जिया में ना रहने का शौक बहुत है कि जी वो पुराने वक्त, मैं यू नो, पुराने वक्त, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें जो, और वो ज़्यादातर पता है कौन लोग करते हैं, जिनका ये वक्त अच्छा नहीं चल रहा होता। जिसका ये वक्त अच्छा चल रहा है ना, प्रेजेंट में जो रह रहा है और उसमें वो कोई कर रहा है कमाल, और वो आगे फ्यूचर की तरफ देख रहा है कि आगे कितना अच्छा होने वाला है, वो पीछे पास्ट को सिर्फ यूज़ करता है ये देखने के लिए कि मैं गलत कहाँ था, और वो गलतियाँ मुझे प्रेजेंट में नहीं करनी है और मुझे अपना फ्यूचर को बेहतर करना है। इसीलिए लोग बार बार पीछे जाते हैं। कई लोग आपको याद है जिसको जी सच मोहब्बतें नहीं मिली, जो कहते हैं कि जी ये मैं शौहर बीवी में भी होता है, महबूब में भी होता है, मोहब्बत में भी लोग होते हैं, जी फलां वाली मोहब्बत अच्छी थी, वो इसलिए अच्छी थी कि ये वाली इतनी अच्छी नहीं है, उसमें आप जलील हो रहे हैं, इसलिए आपको पिछले भाई याद आ रहे हैं या बहन याद आ रही है, और अब आप एक्चुअली उनके मामू और खाला हैं, बच्चों फूफी हैं। सच्ची बातें ये सारी, सब बता के जाऊंगा मैं।
8: ज्यादा लाते कौन सी दवाई
5: कोई मैं नाइक्विल काम कर रही है आई लव नाइक्विल सुबह तक ठीक भी गुजारा कर भी देती है और नींद भी हो जाती है गला भी दुखना बंद हो जाता है और बंदे का दिमाग भी ना थोड़ा वूजी सा होता है लेकिन सच्ची बात बताने को ना आप पता है आपको सच इतना फनी है कि झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है सच इतना फनी है हम लोगों के लिए क्योंकि किसको ही बोलता ही नहीं है जब कोई बोलो हमारी हंसी छूट जाती है
8: लाला ऐसा क्यों है
5: इसलिए कि हम लोग झूठ मुनाफ़कत ड्रामे जो हम सुनना चाहते हैं एम्बेलिशमेंट्स कार्रवाइयाँ यू नो अजीब अजीब बातें यू कम्प्लीट मी इस किस्म की भाई आई एम इनकम्प्लीट माई सेल्फ हाउ द हेल कैन यू कम्प्लीट मी यूर एन इडियट योर सेल्फ ठीक है जी यूर एन इमोशनल फूल एंड आई एम यू नो एन इमोशनल रैक तो क्या मतलब यू कंप्लीट मी तू बेचारा अपना तेरा खाना पीना उठना बैठना नहीं सही तू यू नो हमारे जो दोस्त होते हैं ना वो याद है वो मैं वो एक लेडी थी वो कहती थी जी तो उसको जो हमारे ज़माने के लोग हैं ये कहते हैं हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता और भाई आप पजामे को डब्ल्यू बना के खुद बीच में से बाहर निकल जाते हैं कपड़े आप उठा के जगह पर नहीं रख सकते क्या आपसे मोहब्बत करे कोई मोहब्बत आपसे करे कोई
8: अजीब अजादा ना मैं जब मैं काम करती आई यूज्ड टू वर्क इन लेडी रीडिंग हॉस्पिटल आपने नाम सुना होगा पेशावर का इट्स अ बिग वन हाँ तो वहां पे हमारे कॉलीग होते थे उनकी डिवोर्स मेरे ख्याल से 26 साल 26 इयर्स के बाद उनकी डिवोर्स हुई और द रीजन ही वाज गिविंग के मेरी बीवी से मुझे स्मेल आती है तो व्हाट वाज ही डूइंग फॉर 26 इयर्स वो सब उससे यही पूछ रहे थे कि 26 साल तुमने क्यों बर्दाश्त किया
5: क्योंकि वो एक स्लो आदमी था ना पहले वो ये शुरू से ही अगर वो ये कर लेते और ये कोई चाहे वो हॉलीटोसिस की वाली स्मेल है या जिस किस्म की भी है इंसानों की बॉडी का डिफरेंट होता है ये सारी चीज़ें फिक्सेबल हैं ये कोई रीज़न नहीं है और अगर उनको ये अब वो रीज़न उन्होंने ये उसको बताया तो सारी बात है उनका दिमाग घास खा रहा था इतने अरसे से ये बातें तो पहले 2-4-6 महीने की होती हैं उसके बाद अगर ये सिचुएशन अगर रिपल्सिव किसी इंसान का भी फिजिकली रिपल्सिव होना आपकी तरफ वो शादी जायज़ ही नहीं है बिल्कुल नहीं जायज़ वो शादी वो उसके लिए 26 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं थी मेरा ख्याल है वो फरहाद की तरह शायद कुआं खोद रहा था दूध की नहर बिछाने ही वॉज टू बिजी डूइंग ऑल दैट हालांकि हुजूर पाक की बड़ी मैंने सुनाई भी है कि इन दफ़ा एक औरत थी उन्होंने हुजूर पाक को आके कहा कि जी मेरा शौहर है मेरा ख्याल भी रखता है सिक्योरिटी भी देता है मेरी फैमिली के साथ भी अच्छा है प्रोवाइड भी करता है लेकिन जब वो मेरे पास आता है तो मुझे रिपल्सिव फीलिंग होती है हुजूर पाक ने एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने कहा छोड़ो उसको क्योंकि आप अपने नफ्स के साथ ज्यादती दो बंदों के साथ उसके साथ भी ज्यादती कर रही है उसको पता भी नहीं है कि यह बात ऐसी और दूसरी आप अपने नफ्स पर कोई भी चीज़ इस तरह भारी नहीं कर सकते रब जो हमारा है ना और जो पैगंबर है उसने तो आपके लिए इतनी आसानियाँ रखी हैं हम खुद बदबخت बीच में ये जो लोग हमने अजीब अजीब से रख लिए हैं ठेकेदार मज़हब के और किताब हम खुद नहीं पढ़ते और सुन्नत नबी हम खुद नहीं पढ़ते उसवा हसना जिसे कहते हैं कंप्लीट ब्यूटीफुल लाइफ तो वो जब हमने देखी नहीं तो फिर जाहिरी बात है हमने जहालत की ज़िंदगी में हम अजाब भी काटते रहते हैं इस किस्म के हालांकि दीज वर नेवर इवन माई प्रॉब्लम नथिंग इज़ अ प्रॉब्लम हमारे पैगंबर ने हमारे रब ने हर चीज़ को इतना आसान कर दिया वो चाहता है इंसान किसी चीज़ में एक्सेलेंस को पहुंचे वो उसके लाइट को रिलैक्स रखना चाहता है इसीलिए उसको बताता है ये करो ये ना करो ये करोगे तो ऐसे ऐसे ऐसे हो जाएगा ये करोगे तो वैसे हो जाएगा और अगर तुम चाहत को समझ जाओ मेरी चाहत वो है जो तुम्हारे लिए बेहतरी है उसको समझ जाओ और उसके हिसाब से तुम ऑपरेट करो तो तुम 100 साल की ज़िंदगी में 60 साल की ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकते हो लेकिन हम यू टर्न ले के डिस्ट्रैक्शन में आके इसकी सुन ली उसकी सुन ली और जब समझ भी गए तो फिर भी हम क्योंकि उतना आदत हो जाती है हमें मिजरेबल रहने की आदत तो किसी आदमी ने कहा ना कि जी ये गंजे क्यों हो गया तो उसने कहा यार बस फिक्र बहुत करता था मैं उसने कहा किस बात की फिक्र कहता है बस बाल घिरने की फिक्र तो उन्हें कहा कोई दवाई दारू कुछ और के कहता है नहीं बस फिक्र से ही फारिग नहीं हुआ तो बंदा फारिग हो गया तो हमें कुछ पता ही नहीं है बेचारे हम बहुत लोएस्ट मेंटल कैलिबर के जी 200-400 साल से हमने कुछ नहीं किया हमने इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर हमने फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर हमने लोगों की इनेट एबिलिटीज़ उनके गिफ्ट्स के ऊपर बना के सिस्टम नहीं बनाए ह्यूमन रिसोर्स में हम बर्बाद हैं घर में हमने लोगों को प्रॉपर ये प्यार मोहब्बत और इश्क के ऑक्सीटोसिन और जज्बाती किस्म के वो जो हमारे हॉर्मोन्स हैं उनके चक्कर में हमने गलत औलाद पे गलत किस्म का प्रेशर डाल के उनको जो उनके गिफ्ट थे ही नहीं उस किस्म के अपने कॉम्प्लेक्सेस उनमें डाल के उनसे और काम करवा के गलत टाइम पे गलत लोगों को बुलवा के उनसे शादियां करवा के उनके मथे मार के ये जो हमने सोसाइटी बनाई है इसकी बहुत सख्त सज़ाएँ हैं रब के पास बहुत सख्त सज़ाएँ दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया तो उसकी फिर सज़ाएँ और हम कहते हैं जी हमने तो ये भी किया हमने तो वो भी किया हमने कुछ भी नहीं किया जब हमें पता लग गया कि क्या करना था क्या नहीं करना था उस वक्त हम पे इतना बोझ पड़ चुका था वो जो भाई साहब ने 26 साल बाद जो डिवोर्स दी ना 26 साल कि ज़िंदगी के बाद अभी वो उनकी एक पर्सनैलिटी थी, एक ज़िंदगी है, एक ख्वाहिश है, कुछ मामलात हैं, वो अब कहीं पर भी जाएँगे तो वो इतना बड़ा ख्वाहिशात का बोझ उठा के लेके जाएंगे और आगे फिर उनको वही मिलना है। तो ये काम जो काम 6 महीने साल में करने और समझने का है, उसके लिए अगर आप 25-26 साल लगाएंगे तो जाहिर बात है फिर आपने जिंदगी में तो बूथा ही बना के फिरने ना।
8: और लाला ये हम सब करते हैं, जैसे जो चीज जल्दी मैनेज हो सकती है उसको खींच के इतना लंबा कर देते हैं,
5: क्योंकि डर की वजह से, सोसाइटी की वजह से, माँ बाप की इज्जत की वजह से, ये सारे बखेड़े। एक आदमी खुश, मेरी बेटी खुश ही नहीं है, मैं लानत भेजता हूँ मर्द लोग सोसाइटी वाले क्या कहते हैं, कौन सोसाइटी, कुत्ते बिल्ले सोसाइटी की, जिनको खुद नहीं पता कुछ, झूठ बेईमानी वो कार्रवाई अंदर से खोखले लोग वो क्या कहते हैं, मेरी बेटी ही नहीं खुश, वो तकलीफ में है, वो परेशान है, बस ख़त्म होगी बात। लोग कौन है, वो खर्चा उठाते हैं उसका, उन्होंने तकलीफ उठा के उसको पैदा किया, उन्होंने उस पर खर्चा करके उसके ऊपर काम किया है, लोग कौन, मैं तो लोगों के लोग मेरी बेटी थोड़ी है, मेरी बेटी खुश नहीं है, मेरा बेटा खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, वो बंदा या बंदी उसको डिजर्व नहीं करते। वापस हुजूर पाक ने अपनी दोनों दो बेटियाँ थी, जब इस्लाम आया उन्होंने कहा अपने दो दामादों से, उस वक्त जो थे कि आप इस्लाम में आए, उन्होंने कहा हम नहीं आते, उन्होंने कहा वापस आओ, दोनों बेटियाँ वापस ले लीं अपनी, ख़त्म। उनसे ज़्यादा इज्जत है हमारी, उनसे ज़्यादा लोग हम पे नज़र रखे बैठे, तो हम वीक है ना, हम हमारा कुछ भी नहीं है बेचारों का। और अगर आप ऐसे हों भी और आपकी बेगम ऐसी ना हो तो फिर एक और लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए कहता हूँ दो बंदे एक मकसद, कुछ भी हो जाए एक मकसद, जब तक ये नहीं है वो एनवायरनमेंट में पावर मर्द के अंदर और औरत के अंदर आ ही नहीं सकती, उस फैमिली के अंदर मॉरल करेज आ ही नहीं सकती, ये सब चीज़ें मिल कर आती हैं, ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले आप वो बंदा बने, फिर देखें कि दुनिया आपसे कितनी इज्जत मोहब्बतें करती है, पहले आप वो इंसान वो औरत बने जिसके लिए कैसे कैसे कदरों में लोगों ने हम तख्त ताज छोड़ देते हैं, वो कोई लोग होते हैं, हम लोग लोग नहीं हैं, हम लोग हम लोग हैं, हम लोग समझती हैं आप।
8: हाँ जी,
5: दो किस्म के हम लोग होते हैं। चलें आज आपको हम लोग, एक काले रंग का छोटा सा था जिसमें बहुत सारी वो उसको कहते हैं गाँव में होता था,
8: हाँ,
5: गरीबों का फल जो होता था, छोटी छोटी काली काली, वो हम लोग कहते थे। और एक हम लोग पता है हम किसको कहते हैं,
8: वो बड़ा ऑरेंज वाला,
5: हाँ, पर्सिमन मेरा ख्याल उसको कहते हैं शायद।
8: हाँ जी, हाँ। जो यहाँ $5 का एक मिलता है।
5: हाँ, मैं उसको मिक्स कर जाता हूँ पार्मेजान के साथ।
8: अच्छा।
5: हर दफा आगे पीछे हो जाते हैं मेरे से, क्योंकि दोनों मिलते जुलते ही है ना, आगे पीछे आर को आगे पीछे करने। उनके दिमाग में होता है ये, और कुछ होती है नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो वो चाहता हूँ, फलां चाहते हैं, व्हाई आर यू इवन टॉकिंग अबाउट इट। ये वही वाली बात है, मेरे घुटने में दर्द नहीं है, मैं रोज आपको मिलके बताता हूँ सजीला जी मेरे घुटने में दर्द नहीं है। अरे भाई वो ठीक चल रहा है, मैं क्यों बताऊँ, जब तक मैं लंगड़ा नहीं रहा दुख नहीं हो रहा। तो लोग मैंने देखे वही बातें रिपीट करते रहते हैं, हम तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, फलां तो ऐसे हैं, ये तो अच्छा, आप तो ये हैं, हम तो ये हैं, बट किसने ये बातें तो हो चुकी, कोई डम है जिसको एक बंदे को बार बार बताओगे आप, आपका दिमाग स्लो चलता है तो आप समझते हैं बाकी दुनिया भी स्लो चलती है, इस तरह थोड़ी होता है। तो जो जो भी लोग बार बार चीज़ें करते हैं ना, वो उनका वो चाहते हैं, और अगर फिर कोई और एक और बात भी बताऊं, आप कुछ चाहते हैं और उसके हिसाब से फिर आप ऑपरेट नहीं करते या प्लान नहीं करते, तो फिर वो चीज़ आपको कभी भी नहीं मिल सकती, इसमें खुदा का कोई अमल दखल नहीं, ये आपका काम है। इफ़ यू वांट समथिंग, क्या आपको खाना पसंद होता है, आप निहारी बनाना चाहते हैं, आप खा आप जाके बनाते हैं, तो खुदा आपको रोकता है निहारी खाने से, रोक सकता है नहीं, वो आप खाना चाहते हैं आप जाओ बनाओ खाओ, आप उसमें अल्लाह को हम खुद ले आते हैं बीच में कि मैं मतलब मुझे रोक ले खाना खाने से, क्यों रोके वो आपको, ये तो आपके अपने दिमाग के कीड़े हैं। वो अगर रोकना चाहता है तो फिर शदाद ने जन्नत बना ली थी, उसको पैर उसने नहीं रखने दिया जन्नत में अपनी बनाई हुई, तो नहीं रखने दिया उसने, तो लेकिन उसने तो अपनी पूरी कोशिश की, उसने तो पूरी जन्नत बना दी थी, ख़त्म हो, आप तो बनाओ ना पहले। वो लोग कहते हैं शदाद बड़ा बुरा आदमी, तो शदाद जितना काम तो करके दिखाओ, जन्नत उसने ऐसी बनाई उसको उठा लिया, इतनी आला बनाई उसने, ही वॉज अ क्रिएटिव मैन, उसने ही एटलीस्ट ही डिड व्हाट ही वॉज वॉन्टिंग टू डू, हम में से तो किसी ने वो काम भी नहीं किया, कुछ तो बनाओ। यहाँ तो हम एक थोड़ा सा रिश्ता नहीं बना सके, एक दोस्त नहीं है हमारा, एक गम गुसार नहीं है हमारा, एक हमारा बंदा नहीं जिसको हम राज की बात बता सकें, किसी से हम कुछ शेयर, हर एक से हम डरे हुए हैं, क्या औकात है हमारी। देखें सच में हमारी कोई औकात औकात नहीं होती बेचारे, हम बहुत माठे, बस ऐसे जैसे समझें कि यू नो यरकान हुआ हुआ है हमें, पीली आंखें पीली बूथी के साथ भी मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, आपसे कोई सलाम दुआ ना रखे मोहब्बत कैसे करे आपसे कोई। अरे आप इंसान के पुत्र बने पहले, आप करेंगे मापते हैं आपसे,
8: ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है आपने कोई स्पेशल दवाई ली है।
5: नहीं, आपकी वजह, आप और हीरा सिंह के आने की वजह से हुआ है, मेरे तो बचपन में भी कभी नहीं कहा मेरे से कोई मोहब्बत नहीं करता, मेरी तो जान नहीं छुड़ाना मुश्किल हो गई है लोगों से, बचपन से ही मेरी जान नहीं छोड़ रही, मेरी तो खलाएं मुझको नहीं छोड़ती थी चिमट चिमट के मुझको, मैं कहता करे परे हो जाओ दांत साफ करके आओ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इससे, मुझे तो जान जो होता था मैं जान कैसे छुड़ाऊंगा इनसे। आपको पता है पठानों के कल्चर में ना वी आर नॉट वेरी फिजिकल, लेकिन हमारे साथ सब कुछ बेचारे बचपन से ही रिश्तेदार सारे बहुत फिजिकल प्यार मोहब्बत में थे, तो मैं कहता था यार मैंने दूर हटना है इन लोगों से, ये स्पेस में इंट्रूड कर रहे हैं हमारी
8: बस ज्यादा आप इतने प्यारे लगते हैं सबको, वो मेरा ख्याल से यही वजह,
5: और इंसान और किसी को किसी एक बंदे को तो लगे ना, सबको तो कोई भी नहीं कह रहा, सब लोग तो ऐसे अजाब बन जाते हैं जान का, लेकिन इंसान तो प्यारी चीज है ना।
8: इसका मतलब है आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबको हाँ अच्छा लगा।
5: ये याद रखिएगा जिंदगी में जिस इंसान को भी प्यार मिल रहा है ना, ये रब की मेहरबानी है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी आदमी जब आपसे जिंदगी में कहता है ना हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, या हम आपके लिए आपको बहुत इज्जत करते हैं, या हम आप फलां करते हैं, इसका मतलब है वो दूसरा बंदा जो आपसे मोहब्बत कर रहा है वो कोई कमाल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन है उसका, लेकिन आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली, या आपकी ज़ात की कोई चीज़ हिस्सा है, या आपने उस पर काम किया है अपने ऊपर, और उस वजह से आपको इतनी इतने प्यार मोहब्बतें मिल रहे हैं इंसानों को। ये जिस इंसान को समझ आ जाए, आप वो बटन प्रॉपर आपको समझ आ जाएगी, तो फिर हर आदमी को प्यार मिल सकता है। अगर आपको किसी को भी लगता है कि जी आपको प्यार नहीं मिला, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो वो करने की वजह से आपको हर कोई प्यार करेगा, बेख्तियार हो जाएंगे, ठीक है। आपने पिछले सारे आपके गले शिकवे माफ हुए, जाइए आज हम फिर आपसे खुश हैं, ठीक है
8: ठीक है, सलामत से अल्लाह,
5: सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेहरबान हमारे साथ रेडियो आजाद ऑन द एयर।
19: हेलो आजाद जी।
5: जी हेलो मैम,
19: बस अभी हाय हेलो कहने के लिए इतना ही टाइम बचा है,
5: फिर भी हम आपकी बात सुन सकते हैं।
19: आई हैड कपल ऑफ पॉइंट्स, वो ऑस्ट्रेलिया वाले भाई थे ना, उनका कॉल मैं सुन रही थी, फिर मुझे कॉल आ गया, सो आई वाज आई कुडंट कॉल यू बैक, बट एनीवे, सो यू नो कपल ऑफ थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर नोटिसिंग अबाउट योरसेल्फ कि यू गेट एंग्री और ये सब, सो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द होल बंच, बिकॉज सम पीपल दे डोंट इवन नोटिस दीस थिंग्स दैट दे दैट हैपन टू देम, सो these days you know in my spiritual journey also they always say hey, if you're noticing these things then it's already you are one step ahead. Secondly kehte hain ki you should never feel guilty about anything, because jo ho gaya wo ho gaya, I mean there's nothing you cannot undo that, and it hinders your progress. आपका जो प्रोग्रेस होता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, उसमें थोड़ा हिंड्रेंस आ जाता है, बिकॉज यू आर कभी ये भी होता है ना कि यू आर नॉट एबल टू प्रे, जैसे आपको कहा गया कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे इतना टाइम करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो इफ यू आर नॉट एबल टू डू देन इट्स ओके, यू शुडंट फील गिल्टी अबाउट इट, बिकॉज इट विल हिंडर, इट बी इन द बैक ऑफ योर माइंड एंड इट विल कीप हिंडरिंग यू, तो इससे अच्छा ये है कि ठीक है नहीं हो सका मेरे से, एंड आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस, आई हैड ऑल दीज अदर कमिटमेंट्स, ओके आई कैन डू इट टुडे, तो आपने भी यही बोला था, बट दिस इज अ स्लाइटली न्यूएंस्ड पॉइंट कि वो आपके बैक ऑफ योर माइंड में जाके वो स्टक हो जाता है, एंड देन आप करने भी बैठोगे वो काम या जो भी करना होता है, तो आपके माइंड में ये आ जाएगा अरे मैंने इतने दिन नहीं किया था ये, और यू नो आई एम बिहाइंड, मैं आई फेल बिहाइंड ऑन दिस, सो एंड देन इट बॉदर यू, तो एक बार आपने सोचा कि ठीक है हो गया, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड से कि ओके इट वाज अ मिस्टेक, अब यू नो आई विल डू द बेस्ट आई कैन, दैट्स व्हाई इन ऑल द रिलीजंस दे से यू शुड डू द बेस्ट यू कैन, अभी आपका बेस्ट यही है एट दिस पॉइंट गिवन योर सिचुएशन गिवन एवरीथिंग एल्स।
5: वेरी वैलिड पॉइंट, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और वक्त समाप्त होता है ओमेगा जी, बाकी पॉइंट्स के लिए इंशाल्लाह आती रहेगा, अपना जरूर पॉइंट दीजिएगा, आखिरी वाला पॉइंट बहुत ही कमाल और वैलिड था, इसके ऊपर जी जरूर आपने सोचना है और अपना पॉइंट देना है। और आज का ये शो यहीं पर ख़त्म होता है, अगले शो में मी टाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मी टाइम कोई सेल्फिश पॉइंट या उस चीज़ के लिए नहीं है, मैं अपना मी टाइम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि मी टाइम है क्या, क्यों आपने करना है डेली लाइफ अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए, और कैसे सेल्फ केयर भी आपकी होती है और ये बाकियों के लिए भी बेहतर है, और इसके बारे में हम बात करेंगे वेंसडे का शो, ये मी टाइम का पार्ट टू होगा। पिछले शो में आप लोगों ने अपने बहुत सारे पॉइंट्स दिए, इसी तरह कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाते रहिएगा, आज बहुत अच्छे नई आपको मेहरबान आवाज़ें और मेहरबान लोग आए, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर है स्टूडियो का 972-501-9390। और अब वक्त तो हो गया, लेकिन चलिए दूर से कॉल है, कर ले लेते हैं। रेडियो आजाद ही रौंदी है।
20: हेलो जी, सत श्री अकाल
5: जी। वाधवा जी, देखें आपकी कॉल हम नहीं मिस करते, चाहे वक्त ना भी हो तो। हुक्म।
20: थैंक यू सो मच। मैं क्या बुलंद हो गई आवाज आके प्रोग्राम देना शुरू किया थे।
5: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
20: एंड डॉक्टर शकीला शी सच ए स्वीट पर्सन। मैं मिली तो नहीं, पर मैं जिस वे सुनिया ना, मेरा दिल करता तो मैं हक करा।
5: इंशाल्लाह मैं आप वाला हक हम जरूर करेंगे।
20: ठीक है,
5: ठीक है, जरूर इंशाल्लाह ये मौका लगेगा, हम हक पहुंचा देंगे आपको।
20: देखो ऊपर वाले ने चाहा थे,
5: पुराने जमाने में ना जिस तरह गायबाना नमाज जनाजा होता सी, हुण असी गायबाना हक भी देना शुरू करेंगे बाबा जी। तुसी ना अगले शो च आना, मैं तैनूं ऑनियर भी लेना, तुसी कुछ सुनाना।
20: मैं हाजिरी भर लवां क्योंकि काफी कॉल्स आ रही सी, और बढ़िया हीरा सिंह ने भी बड़े अच्छे सवाल किए, बच्ची ने भी बड़ा, बच्चे बड़े अच्छे अच्छे सवाल कर दे
5: आजकल। देखो ना तुसी सरदार छाए पे ने। ठीक है, अगले शो
20: मैं सिर्फ अपनी हाजिरी भर लवां।
5: सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच वाधवा जी, ऑल द वे फ्रॉम कैनेडा, छत्र छाया में जी, आपके प्यार और दुआओं में, आपकी अरदासों में, इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर मुलाकात होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम टू साइन ऑफ, और आपसे इजाज़त।

सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: किया है। अमेरिका का मजमू कर्ज 40 ट्रिलियन के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ जारी मुश्तरका फौजी मशकों को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म जारी कर दिया। सामीन, ये थी इस वक्त की अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.

0: गंदम की साथ क्या आएंगे?
1: बाली
0: बाले, बालियां होना चाहिए था, नहीं? बाले बाले, ओके। अरबी में गंदम की बाली को सुम्बुला कहते हैं, ये बात अब याद रखनी है आपने, ये कुरान के अजायब में से है। सुम्बुला गंदम की एक बाली। मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था, मैंने पूछा ये उसको अंग्रेजी में कहते हैं ईयर ऑफ कॉर्न और ईयर ऑफ ग्रेन, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो जो, उर्दू में क्या कहते हैं, वो जो चीज़ होती है जो उसके अंदर होती है, वो चीज़। तो किसी ने, प्रोफेसर साहब ने कहा बाली कहते हैं, तो बाकी सारे कहते हैं बाली तो ये वाली होती है। तो उर्दू का तो खैर अब जनाजा निकल चुका है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो मैंने एक तो तर्जुमा करना था गंदम की वो चीज़ जिसके अंदर वो चीज़ होती है, वो ज़्यादा समझ में आ जाती है आपको, वो चीज़ आसान रहती है फिर। ओके, लेकिन खैर गंदम की बात, सात बालें, चलो तस्वीर से फायदा हो गया। इसका वाहिद क्या है? सुम्बुला, लिखा हुआ है वहां पे सुम्बुला, लेकिन इसकी जमा अरबी में दो हैं। इस लफ्ज की जमा दो हैं, एक है सुम्बुलात और एक है सनाबिल। सुम्बुलात और सनाबिल। अच्छा, अगर मैं कहूं सबअ सुम्बुलात, सबअ सुम्बुलात, इसका मतलब है सात बालियां बालें। अगर मैं कहूं सबअ सनाबिल, फिर भी इसका मतलब क्या है? सात बालें। कुरान में एक मकाम पर सबअ सुम्बुलात खुदर, सूरह यूसुफ में सात बालियों का जिक्र है, जब वो ख्वाब देखा था बादशाह ने, तो उसने सात बालें देखी थी, है ना? वहां कहा सबअ सुम्बुलात। सूरतुल बकरा में इन्फाक की बात की जा रही है कि अगर कोई अल्लाह की राह में खर्च करता है तो उसकी मिसाल ऐसे है, कोई एक बीज हो जिसकी वजह से अम्बतत सबअ सनाबिल, उसकी वजह से सात बालें उगें निकलें। लेकिन वहां पर लफ्ज सुम्बुलात नहीं इस्तेमाल किया, क्या किया? सनाबिल। लेकिन नंबर एक ही है, सूरह यूसुफ में भी सात और सूरह बकरा में भी सात, लेकिन फिर भी फर्क क्या है? एक में एक तरह की जमा इस्तेमाल की, दूसरी में दूसरी तरह की जमा, बकरा में सनाबिल और यूसुफ में सुम्बुलात। यहां तक फर्क समझ आया? सवाल पैदा होता है कि इस फर्क से क्या क्या सीखते हैं हम? असल में अरबी में जमा के मामले में कुछ ऐसी बात है जो उर्दू में नहीं है। उर्दू में होता है वाहिद या जमा, अरबी में होता है वाहिद, फिर तस्निया दो, और फिर मुख्तलिफ किस्म की जमा होती हैं। एक तरह की जमा नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म की जमा होती हैं। उसमें से दो कैटेगोरीज क्या हैं? इसको कहते हैं जमउ किल्ला व जमउ कसरा, ज्यादा वाली जमा और कम वाली जमा। यानी जमा तो है अरबी में, लेकिन कुछ जमा ज्यादा वाली और कुछ कम वाली। मैं उसकी मिसाल देता हूं आपको। बहर कहते हैं समुंदर को, बुहूर जमा है, बुहूर है जमउ कसरा, यानी बहुत सारे समुंदर। और अबहुर, अबहुर भी जमा है, लेकिन वो है जमउ किल्ला, कम समुंदर, कम समुंदर। ये जमे एक से ज्यादा है। इसी तरह काफिर,

0: ये बड़ी प्यारी मिसाल है और ये ज़रा समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं ये बात आपके सामने वाज़ेह तरीके से पेश कर सकूँ। ये हैं दो आयात, दोनों मदनी आयात हैं, एक आले इमरान से है और एक सूरह हदीद से है, और तकरीबन बात दोनों में एक ही हो रही है। वसारिउ इला मग़फिरतिम मिन रब्बिकुम, जल्दी करो एक मग़फिरत की तरफ जो तुम्हारे रब से आती है, अपने रब से आने वाली मग़फिरत की तरफ जल्दी करो। व जन्नतिन, और ऐसी जन्नत की तरफ जल्दी करो। अर्दुहा समावात वल अर्द, जिसका साइज आसमानों और ज़मीन के बराबर है। आसमानों और ज़मीन के बराबर है। आपको मालूम होगा आसमान कितने हैं, सात आसमान। सात नहीं कहा लेकिन समझ में आ जाती है बात, कहे बगैर सात आसमानों की बात हो रही है, जन्नत के की वसत की बात हो रही है। ऐसी जन्नत की तरफ भागो जिसकी वसत कितनी है, सातों आसमान और ज़मीन के बराबर। उइद्दत लिलमुत्तकीन, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। ठीक है जी, ये है आले इमरान की आयत, मुख्तसर सा तर्जुमा। अब आते हैं हदीद में, तकरीबन वही बात लेकिन थोड़े से फ़र्क के साथ। सारिउ से शुरू नहीं हो रही बात, एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्क्रीन पे। क्या कहा है अल्लाह ताला ने, साबिकू, सारिउ नहीं कहा, साबिकू कहा है, सबकत ले जाओ एक दूसरे से, एक दूसरे से रेस लगाओ, दौड़ लगाओ। पिछली दफ़ा क्या कहा था, जल्दी करो, जल्दी करो। दूसरे में कहा क्या कहा है, सबकत ले जाओ, दौड़ करो, दौड़ लगाओ। पहला फ़र्क, देखते हैं कोई और फ़र्क होंगे कि नहीं। इला मग़फिरत मिन रब्बिकुम, जैसे पहले था, किसकी तरफ दौड़ लगाओ, ऐसी माफ़ी की तरफ, ऐसी मग़फिरत की तरफ जो तुम्हारे रब से आती है। वह जन्नत, और ऐसी जन्नत की तरफ, अर्दुहा, जिसकी वसत, जिसका साइज, का अर्द समाई वल अर्द, उसकी वसत तकरीबन, अब मैं तर्जुमा गलत तर्जुमा पहले करूँगा, इसकी वसत तकरीबन आसमान और ज़मीन के जैसी है। आसमान और ज़मीन, पिछली दफ़ा क्या कहा था, सारे आसमानों और ज़मीन की बात थी ना, अब कहा है असमा। असमा वाहिद है या जमा है, जमा है। और एक और फ़र्क भी है, पहली दफ़ा कहा था इसका साइज सातों आसमान के बराबर है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब बात कह दी, इसका साइज तकरीबन उसकी तरह है, किसकी तरह है, आसमान और ज़मीन के बराबर। अब बात अब समझ नहीं आ रही, अगर सात आसमान के बराबर है तो तकरीबन एक आसमान और ज़मीन के बराबर कैसे है, कुछ बात कंफ्यूजिंग होगी। अच्छा, आखिर में कहा था उइद्दत लिलमुत्तकीन, पहली दफ़ा किसके लिए तैयार की गई है जन्नत, तकवे वालों के लिए। ठीक है, यहाँ कहा है उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, ये ऐसे लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर ईमान लाए और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाए। ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ, ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़जल है, ख़ास इनाम है। फ़जल कहते हैं जो इजाफी चीज़ होती है, जो आपने उजरत में कमाई नहीं हो उसके मजीद हो, ये मजीद एक एहसान है अल्लाह ताला की तरफ से, इसे फ़ज़ल कहते हैं। सो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा फ़जल है, बड़ा एहसान है, जो जिसको चाहे वो दे। वल्लाहु ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, और मजीद देने वाला, मजीद ज़्यादा बरकत देने वाला, बहुत ज़्यादा देने वाला, उसकी इस्तेआत रखने वाला तो वही अल्लाह ही है। वल्लाहु ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें एक जैसी हैं और कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब शुरू से बात करते हैं दोबारा। आपको जॉब पे जाना है, आप थोड़ी देर से उठे सुबह को, आप रेस लगा रहे हो या जल्दी कर रहे हो, जल्दी कर रहे हो, आपको कोई फिक्र नहीं कोई और जल्दी उठा या नहीं उठा, आपको किसी और की फिक्र नहीं है, आपको अपनी फिक्र है, आप खुद मोटिवेटेड हो कि आपने क्लास पे पहले पहुंचना है। ठीक है, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जब उनको एक जिम्मेदारी का एहसास हो जाए ना, उनको ये फिक्र नहीं होती और कोई क्या कर रहा है, और कोई सो रहा है, और कोई उठा हुआ है, और कोई जल्दी कर रहा है, और कोई आहिस्ता कर रहा है, मुझे जल्दी करनी है। उसको और किसी की, वो कोई किसी और को देख नहीं रहा होता, वो खुद ही से मोटिवेट हुआ होता है। और ऐसे लोग, उनकी उन सब में एक चीज़ कॉमन ये होती है कि उनके सामने एक गोल होता है और वो उस गोल पे, उस हदफ पे वो इतने फोकस हो जाते हैं, इतने मुर्तकिज़ हो जाते हैं कि बाकी लोग उनको नज़र नहीं आते, उनको कोई कंपैरिजन नहीं करना होता एक दूसरे की, इस ये क्या कर रहा है, ये आगे निकल गया, ये पीछे रह गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा उसको, बस अपना गोल नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप दौड़ लगाने की बात करते हो तो दौड़ लगाने में कुछ लोग तो हैं जिनको बस गोल नज़र आ रहा है, लेकिन और लोग हैं जो कहते हैं यार ये तो आगे निकल गया, मुझे भी आगे निकलना चाहिए, बाकी सारे तेज गाड़ी चला रहे हैं, मैं आहिस्ता चला रहा हूं, मुझे भी थोड़ी तेज करनी चाहिए, ठीक है ना। सारे उस दुकान पे जाके शॉपिंग कर रहे हैं, मुझे भी वहां जाके करना चाहिए। सारी लाइनें इस रेस्टोरेंट पे लगी हुई हैं, वो रेस्टोरेंट खाली है, मुझे भी वहां जाके खाना चाहिए। यानी आप बाकियों को देख के आपने भी दौड़ में शिरकत कर ली, ठीक है। तो नफ्सियाती तौर पे एक शख्स है जो बाकियों को देख के थोड़ा इंस्पायर हो गया या उनको कॉपी कर रहा है, और दूसरा जो है वो अपने तौर से उसने इनिशिएटिव लिया। तो कौन सी आयत में अपनी तौर से इनिशिएटिव ज्यादा है? पहली आयत, क्योंकि वो खुद से क्या कर रहा है, जल्दी कर रहा है, खुद से जल्दी कर रहा है। अच्छा, फिर दूसरी बात, आखिर की तरफ आते हैं, फिर दरमियान में आएंगे। आखिर में अल्लाह ताला ने कहा जिनसे जल्दी करने को कहा है वो कैसी, किसके लिए वो जन्नत बनाई है? मुत्तकीन के लिए, मुत्तकीन। अब मैं सवाल, मुश्किल सवाल है, क्या तमाम मुसलमान मुत्तकीन हैं? ना, यानी ये तमाम मुसलमानों के बारे में बात नहीं हो रही, मुसलमानों के ग्रोह में से एक सबसेट जिसे कहते हैं ना, एक उसकी कम नस्बत है, उनके बारे में बात हो रही है। अब तादाद इन लोगों की कम हो गई, ठीक है। अब इससे अगली आयत में इन मुत्तकीन के बारे में कुछ मजीद बातें बताई जाएंगी, ये कैसे मुत्तकीन है। कहा अल-मुत्तकीन अल्लज़ीना युन्फिकून फिस सर्रा वद्दर्रा, ऐसे मुत्तकीन जो खुलेआम, जो आसानी के वक्त पे और मुश्किल के वक्त पे खर्च करते हैं। यानी सिर्फ मुत्तकीन ही नहीं है, खर्च करने के मामले में, सखावत के मामले में, आसानी हो या मुश्किल हो, वो हाथ पीछे नहीं रोकते। अब ये इनकी तादाद बढ़ गई या कम हो गई? और मजीद कम हुई ना। फिर कहा वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़, और ना सिर्फ खर्च करते हैं हर हाल में, अपने गुस्से को पी भी जाते हैं, अपने गुस्से को उगल जाते हैं। तादाद कम हो गई या ज्यादा हो गई? और कम हो गई, और एक मजीद फिल्टर लग, सही बात कह रही हूं, और एक फिल्टर लग गया, अल-काज़िमीन अल-ग़ैज़। फिर उसके बाद मजीद कहा अल-आफ़ीना अन-नास, और मोहब्बत से लोगों को माफ करते हैं। गुस्से को पी जाना एक बात है, किसी ने आपके साथ कुछ किया, गलती की, आप रेस्टोरेंट में थे, वेटर ने आपके ऊपर गलती से पानी गिरा दिया, इट्स ओके सर, सॉरी सॉरी सर, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है, गुस्सा तो आप पी गए, लेकिन शक्ल पे अभी भी अनोयंस है, शक्ल पे अभी भी कुछ एजिटेशन है। अल-आफ़ीना अन-नास, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, देखो आप डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा करो आप मेरे साथ बैठ के ये लंच मेरे साथ खा लो आप। यानी आपने सिर्फ गुस्सा नहीं पिया, आपने मोहब्बत से माफ भी किया। अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक मशहूर रिवायत है, कुछ कहते हैं हसन से मुतालिक है रदी अल्लाह अन्हु, कि उनका एक गुलाम था, वो उनको पानी दे रहा था तो उसने जग गिरा दिया उनके पाँव के ऊपर, पाँव जख्मी कर दिया। तो उसने ये आयत पढ़ ली वल-काज़िमीन अल-ग़ैज़, गुस्से को पीने वाले, कुरान का हवाला है, कुरान बचाने के लिए है। तो उन्होंने कहा कज़म्तु ग़ैज़ी, मैंने गुस्सा पी लिया। फिर उन्होंने कहा अगली आयत का हिस्सा उन्होंने पढ़ा, गुलाम ने, कहते हैं वल-आफ़ीना अन-नास, और लोगों को जो मोहब्बत से माफ़ भी करते हैं, देखो चलो आफ़ा तुक, तुझे माफ़ भी कर दिया। अब आयत का आखिरी हिस्सा है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वाले, बेहतरीन करने वालों से मोहब्बत करता है, जा तू आज़ाद हो गया। तो वो तीन, अब मुत्तकीन से बात शुरू हुई थी, वो पहले ही सारे मुसलमान नहीं हैं। अब मुत्तकीन में से ऐसे जो हर सूरत हाल में खर्च करते हैं कम हो गए, फिर उसके बाद गुस्सा भी पीते हैं और कम हो गए, फिर लोगों को मोहब्बत से माफ़ भी करते हैं और भी कम हो गए, और हर वक्त एहसान का मुजाहरा करते हैं और भी कम हो गए। तो ये वाली जो जन्नत है ना, ये बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड किस्म के लोगों की है, जो खुद ही से जल्दी करते हैं, उनके अंदर खुद ही कोई आग लगी हुई है जिससे उसको उनको ड्राइव करती है। ये खास लोगों के बारे में बात कही जा रही है, या आम के बारे में, आवाम के बारे में ये बात नहीं है, खवास के बारे में बात है, ठीक है। अभी आसमानों के बारे में आखिर में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा तकाबुल कर लें दूसरी तरफ। शुरू में कहा था साबिकू, अब दूसरी आयत में दौड़ लगाओ, दौड़ लगाने वाले दूसरे को देख के करते हैं कि खुद से करते हैं? दूसरे को देख के करते हैं। तो ये इंसानियत की अक्सरियत नहीं है, उसने ये डिग्री की मैं भी यही कर लूं, उसने ऐसे कपड़े पहने मैं भी यही पहन लूं। यानी यही तो हमारी एक टेंडेंसी है कॉपी करने की, जिससे इतनी सारी मार्केटिंग चलती है, इतनी सारी एडवर्टाइजिंग चलती है, हम दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं, दूसरे को देख के हम कहते हैं हम भी ये करना चाहते हैं। कितने करोड़ों लाखों अरबों बच्चे दुनिया में होंगे जो फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल खरीदने गए होंगे, यू नो कितनी खिड़कियां टूटी होंगी दुनिया में, राइट? क्योंकि हम देख के हम भी अब हमारे भी ख्वाब आ गए। ऐसा ही होता है ना, साबिकू इला जन्नत मिन रब्बिकुम व जन्नत अर्दुहा का अर्द समाई वल अर्द। पर यहां कहा किसके लिए जन्नत? ये वाली जन्नत मुत्तकीन के लिए नहीं, कहा इन उन सब के लिए जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। ये कम लोग हैं या ज्यादा लोग हैं? इसमें तो मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। और ये भी नहीं कहा जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, कहा अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए। तो इसमें हम तो वैसे भी तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं, लेकिन यहां पर बात उन लोगों की भी हो गई जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मूसा पर ईमान लाए, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से आदम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। तमाम रसूल जिनके बारे में अल्लाह ने हमें बताया, वमिनहुम मन लम नक़्सुसहुम अलैक, और उनमें से ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमने आपको नहीं बताया, उन सब को शामिल कर दिया। तो दूसरी आयत में कम लोगों की बात हो रही है या ज़्यादा की? शुरू से साबिकू के लफ्ज़ में ज़्यादा की तरफ इशारा, और आखिर में जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर और उसके तमाम रसूलों पर। अच्छा, उनमें मजीद कोई कैद डाली कि सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है बल्कि उनको अपना गुस्सा भी पीना होगा, तकवा भी दिखाना होगा और नमाजें भी कायम करनी होंगी, और कोई मजीद यहाँ पर शर्तें डाली हैं कि नहीं? नहीं डाली। तो मालूम ऐसा होता है कि जो दूसरी जन्नत है ना, इसका दरवाज़ा कुछ ज़्यादा कुशादा खुला हुआ है, लग रहा है ना? अब इसका जो दरवाज़ा कुशादा खुला हुआ है, अब आसमान की तरफ आते हैं, फिर इन आयात को समझेंगे। पहली आयत में कितने आसमानों का जिक्र था? सात आसमान। आसान सा सवाल है, सात आसमान ज्यादा बड़े हैं या एक? गलत, एक बड़ा है। अब समझाता हूं क्यों। अरबी में असमा का लफ्ज जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो आसमान उसका तर्जुमा सही नहीं है। असमा जब इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं हर वो चीज जो ऊपर है। ऊपर, ऊपर के लिए लफ्ज़ क्या होगा? असमा। जब आपने सात आसमान कहा तो ऊपर में से सिर्फ सात आसमान की बात हो रही है, लेकिन ऊपर जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, उसको हम क्या कहेंगे? असमा। अच्छा, उसमें कैद डालनी हो, उनमें से किसी एक आसमान की बात करनी हो, हम कहेंगे असमा अद्दुनिया, सबसे नीचे वाला आसमान, यानी उसमें कोई मजीद इजाफा करना पड़ेगा। अस्समा अस्साबिया, सातवां आसमान। अस्समा अस्थानिया, दूसरा आसमान। अस्समा अस्थालिथा, तीसरा आसमान। लेकिन अगर आप कहें सिर्फ अस्समा, तो इससे क्या मुराद है? जो कुछ भी ऊपर है। अब ये अल्फाज जो कुछ भी ऊपर है, सब कुछ जो ऊपर है, वो ज्यादा वसत रखता है या सात आसमान ज्यादा वसत रखते हैं? जो कुछ भी, यानी नीचे वाली आयत में, हदीद वाली आयत में, इतनी हर लफ्ज में ज्यादा से ज्यादा वसत है कि नहीं? और इसीलिए, क्योंकि जो कुछ भी है उसमें तो फिर अल्लाह ताला के अर्श के बारे में भी बात हो गई, तो उसको तो आप इक्वेशन नहीं बना सकते, उसको बराबर नहीं कर सकते जन्नत के, क्योंकि उसके मुकाबले में तो जन्नत भी कुछ नहीं है। तो क्या किया? का अर्ज समा, उसकी तरह से कुछ, अगर तुम समझ लो, बराबर नहीं। का अर्द समा वल अर्द। अच्छा, यहां पर फिर यह सवाल पैदा होता है कि इन दोनों आयात में से अल्लाह ताला की रहमत इंसानियत पर ज्यादा किस में है? निचली वाली में है ना। तो देखिए, निचली वाली में एक कलाम का इजाफा है जो पहली आयत में नहीं है। कहते हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तरफ से ज्यादा है, जो जिसको चाहे देता है, अल्लाह ही है ज्यादा देने वाला। सुभान अल्लाह। एक तो बात हो, मैंने एक स्क्रीन पर ये आयत और ये आयत एक दूसरे के नीचे रख दी कि हम तकाबुल कर सकें, लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ था तो ये एक आयत दूसरी आयत के साथ नाजिल हुई थी क्या? एक आयत एक किसी साल में, एक आयत किसी और साल में, एक आयत जब सहाबी किरात कर रहे हैं तो वो सूरह आले इमरान की किरात कर रहे हैं, उसमें वो आयत आ रही है, एक सूरह हदीद की किरात कर रहे हैं तो उसमें वो आयत आ रही है। जहन में तो आएगा इस तरह की एक आयत याद आती है, लेकिन हम तो, मैं तो यहां पर स्क्रीन पे दिखा के एक एक लफ्ज को कंपेयर करके, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें तो पढ़ना आता है, हमें अल्फाज देखने आते हैं, हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसको लाल कर दिया, उसको काला रख दिया, ये मैं कर सकता हूं। वो लोग करते थे ये चीजें, उनके लिए कुरान तो सुनी हुई चीज थी ना, लिखी हुई चीज थोड़ी थी, सुनी हुई चीज थी। इस किस्म की बारीक दिक्कत, इतना नाजुक कलाम कि एक एक चीज का, एक एक लफ्ज का लिहाज रखा गया हो, वो भी ऐसे कलाम में जो लिखा हुआ नहीं पेश किया गया, बोला हुआ पेश किया गया, इंसान की सलाहियत से कितना दूर है, कितना दूर है। थोड़ा सा भी तदब्बुर अल्लाह ताला के कलाम पर इंसान कर लेना, उसको ये बात वाजे हो जाए, ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा, चुनने के लिए दो लफ्ज। सूरतुल हज के आखिर में अल्लाह ताला ने चुनने के लिए, अरबी में चुनने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इख्तियार करना, इख्तारा या इख्तियारो, इख्तियार करना भी अरबी का लफ्ज है, इस्तफा उसको भी चुनना कहते हैं, इजतबा उसको भी चुनना कहते हैं। अरबी में ये तीनों अल्फाज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह ताला की जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी ना पहाड़ी पर, तूर पर, तो उन्होंने उनसे कहा था अन अख्तरतुका, मैंने आपको चुन लिया, मैंने आपको चुन लिया। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? इख्तियार। इख्तियार, इख्तियार से मुराद है ऐसी चीज चुनना जिसमें खैर हो। इख्तियार खैर से निकला है, खैर के मायने हम सब जानते हैं। इख्तियार क्या है? ऐसी चीज को चुनना जिसमें खैर हो। इस लफ्ज का इस्तेमाल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्यों किया गया? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक गिल्ट था कि मैंने कत्ल किया है, तो मैं तो पता नहीं अल्लाह ने माफ किया या ना किया। हो सकता है उनके दिल में कुछ गुमान रह गया हो, या फिर भी वो समझते हो कि अब मैं ठीक है। किसी ने यहां पर भी ऑडियंस में सवाल पूछा था, ठीक है हर अल्लाह ताला अस्साबिकून अस्साबिकून की बात करते हैं, लेकिन जिसने पीछे को गलती की हो वो तो पीछे रह गया ना, अब वो जितना भी अच्छा करे लेकिन उसके खाते में कुछ नेगेटिव तो है ना, तो वो बाकियों के साथ तरह आगे तो नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला ने पहली तसल्ली किसी और बात करने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दी है? आपके अंदर जो खैर है उसकी बुनियाद पर मैंने आपको चुना है, वह अनख्तरतुका। लेकिन हम जो यहां पर तकाबुल करेंगे वो सूरत अल हज की आखिरी आयात के बारे में है। वहां पर अल्लाह ताला ने इख्तियार के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए एक ही रुकू के अंदर, दो मुख्तलिफ अल्फाज, और ये अरबी का कायदा है, इज़ा इज्तमा तफर्रका, अगर दो एक जैसे मायने के लफ्ज एक साथ आ जाए ना, तो मकसद ये होता है कि उन दोनों का फर्क वाजे करना होता है, उसके फर्क की तमीज करनी होती है। जैसे हम कहते हैं मुसलमान है या अहले ईमान है, एक ही बात है, लेकिन अगर मोमिन और मुस्लिम को एक ही जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन दोनों में कोई फर्क है, तो इस फर्क को समझते हैं। अल्लाह ताला अपने रसूलों के बारे में कहता है, अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह फरिश्तों में से और इंसानों में से अपने रसूल चुनता है, फरिश्तों में से और इंसानों में से अपने रसूल चुनता है। चुनने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? यस्तफी। यस्तफी, इसी से हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक लफ्ज, एक लकब इस्तेमाल करते हैं, मुहम्मद अल मुस्तफा, मुहम्मद अल मुस्तफा, उसी से निकला है, इस्तफा से। इसका इस तो ये लफ्ज हुआ, अल्लाह ताला ने जब रसूलों का की सिलेक्शन की, उनको चुना, उनका इख्तियार किया, फरिश्तों में से भी जैसे जिब्रील का इख्तियार किया गया है अलैहिस्सलाम, और जिस तरह रसूलों में से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे जाकर इन्हीं आयात में अल्लाह ताला ने हमारे बारे में बात की, मुसलमानों के बारे में, कहते हैं हुवजतबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, उसने तुम्हें चुना है, उसने तुम सबको चुना है। लेकिन वहां जब चुनने की बात की तो यह नहीं कहा हुवस्तफाकुम, कहा हुवजतबाकुम, वो इज्तिबा का लफ्ज है। हम वो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इस्तेमाल करते हैं, मुहम्मद अलमुजतबा, अलमुस्तफा वलमुजतबा, है ना। लेकिन मुजतबा का लफ्ज असल में कुरान में किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? हमारे लिए। हम असल में मुजतबा हैं, हम मुजतबाउन हैं असल अरबी के एतबार से, हमें चुना गया है। तो चुनने के लिए दो लफ्ज। अच्छा, आप इनको जल्दी से समझते हैं, मैं सब मिसाल के तरीके से मैं आपको समझाता हूं ताकि बात आसानी से समझ आ जाए। आप में से किसी को चॉकलेट पसंद है? ओके, कौन सी चॉकलेट पसंद है? स्निकर्स, माई काइंड ऑफ पीपल। एनीबडी एल्स? किट कैट, स्निकर्स, कोई ज्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं है, कुछ और नहीं है? मार्स? यार क्या यार, टॉब्लरोन, लिंट, लिंट, रोशेर्स, बाउंटी, ओके, बाउंटी इज पेपर इन इट, नो ओके आप दुकान पे जाते हो, आप अपनी बीवी के साथ दुकान पे गए, आपका दिल चाहता चॉकलेट खरीदने का, तो आपने स्निकर्स उठा ली। आपकी बीवी आपसे पूछती है, आपने स्निकर्स क्यों ली, किटकैट क्यों नहीं ली, ट्विक्स क्यों नहीं ली, टॉब्लरोन क्यों नहीं ली, थू क्यों नहीं ली, आपसे पूछ रही आपने स्निकर्स क्यों ली, बताएं मुझे क्यों ली, तो आप कहें फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक मुझे स्निकर्स पसंद है। आपने चुना है ना उसको, स्निकर्स का इख्तियार किया है, क्यों किया है, किस वजह से किया है, सोशल फैक्टर्स हैं उसके, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है उसकी, पसंद है मेरी बस पसंद है, या वो सस्ती है, वो कह रहे हैं सस्ती है। अगर आप आगे आप एक और स्टोर पे गए, अब मैं इकोनॉमी की बात निकालता हूं, एक ही कीमत की सारी कमीजें लगी हुई हैं, एक ही स्टाइल की है, एक ही सिलाई की है, और आपने नीली वाली चुन ली, आपकी बीवी आपसे कहती है आपने नीली वाली क्यों चुनी, सब्ज वाली क्यों नहीं चुनी, सफेद वाली क्यों नहीं चुनी, पीली वाली क्यों नहीं चुनी, आपने नीली वाली क्यों चुनी, तो आप कहो माफ करो मुझे लेने दो यार, क्योंकि आपने किस बुनियाद पर चुनी है, पसंद है मेरी पसंद है मेरी पसंद है। कुछ कुछ इख्तियार ऐसा होता है जिसमें आपकी पसंद होती है, बस मेरी मर्जी, मैं जो खाऊं, मैं जो ऑर्डर करूं, ये क्यों ऑर्डर किया, ये क्यों खा रहे हो, ये क्यों पहना हो, क्योंकि मेरी मर्जी, ठीक है, ऐसी मर्जी को कहते हैं इस्तीफा। इस्तीफा निकला है सफवा से, सफवा कहते हैं खालिस चीज को, इससे उर्दू में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं साफ, साफ शफाफ जो हम कहते हैं ना, ये असल में सफा से है, अरबी की अरबी का लफ्ज है, और इसका नाम इसका इस लफ्ज का मायना है पाकीजा और पाक, ऐसा इख्तियार जो पाक और खालिस किसका है, मेरा है, इसमें किसी का बाहर से अमल दखल नहीं है, उसे कहते हैं इस्तीफा। अब मैं एक और आपको मिसाल देता हूं, आप में से किन कौन है जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, अच्छा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के रिस्क में इजाफा करे, फर्ज करें कि आपकी जॉब है, आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपकी जॉब है आपने इंटरव्यू लेना है, अकाउंटेंट की जॉब खुली है, 5-6 लोग आए हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, और आपने इंटरव्यू लेना है जी, ठीक है, पहला आया उसने इंटरव्यू दिया, फारिग किया उसे, दूसरा आया कि हम रब्ता करेंगे, तीसरा चौथा पांचवा, फिर आपका बॉस आके आपसे कहता है तो क्या ख्याल है किस कैंडिडेट को लें, तो आप कहें वो तीसरा वाला सही था, तो फिर वो आपसे पूछता है क्यों, कहते हैं उसने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, उसकी जेब में स्निकर्स थी। अगर आपने अकाउंटेंट को हायर करना है किस बुनियाद पे, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसने अगर आपने उसको कोई कॉम्पिटेंसी टेस्ट दिया है, कोई साइकोलॉजिकल इवेल्यूएशन की, ये सारी चीजें देख के ही आपने हायर करना है ना, उसमें इस्तीफा तो नहीं चलेगा ना। कभी कभी ऐसा इख्तियार करना पड़ता है जिससे इख्तियार का यानी आपकी अपनी चॉइस का ताल्लुक नहीं होता, इम्तियाज का ताल्लुक होता है, जैसे स्टूडेंट्स पिक किए जाते हैं इम्तियाज की बुनियाद पर, खसूसियात होती हैं, कोई क्वालिफिकेशंस होती हैं, ऐसी सिलेक्शन को कहा जाता है इज्तिबा। जबू से निकला है, जबू कहते हैं अरबी में टैक्स कलेक्शन को, असल में खराज जो कलेक्ट किया जाता है ना, वो हर एक से नहीं किया जाता, जिसके पास क्वालिफाइड इनकम होती है, इतने पैसे होते हैं कि उससे अखज किया जाए, वो फिर मुजतबा हो जाता है, तो और उसे जबू लिया जाता है। तो बात ये मैं कहना चाह रहा हूं कि एक लफ्ज है, कोई भी आप मर्जी का चुने उसके लिए इस्तीफा, और जब किसी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर आप चुने, खास मकसद के लिए चुने, एक सारे फैक्टर्स देख के आप चुने, उसको कहा जाएगा इस्तीफा। मियां बीवी की लड़ाई हुई, शौहर ने कुछ गुस्से में आके कुछ बात कह दी बहुत ही ज्यादा बुरी, मुझे पता था तुमसे मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, और उसके बाद एकदम से, पहले तो दोनों का वॉल्यूम बढ़ रहा था, जैसे ही शौहर ने यह बात कही तो बीवी के साथ क्या हुआ,
1: क्या
0: वॉल्यूम एकदम से गिर गया, वो चुप हो गई, रोती हुई कमरे में चली गई, या फिर वो शौहर ने आवाज उठाई कोई और गुस्से में बात की, वो बिल्कुल खामोश हो गई, फिर वो आके उसको मनाने के लिए कहता है देखो।
2: Coming, Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM.

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
2: Assalamu alaikum and welcome to the Book Club show on Inspire 105.1 FM. My name is Imrana Mahmood and I'm really excited for today's show because we are going to be talking about general summer reading, because holidays are usually the best time I